आज तक आई न चंचल नारी, दे दे ताली एक छपा के बात बने अलबेले।

हरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

ये है लल्लू, ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण। तू क्यों रोता चंद्र भान, माने बेटा मेरी जान, ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान। ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले अपने घर की शान, पी ले बीड़ी खा ले पान।

0: जाते हैं
1: मेरे जूते से।
0: जूता पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अभी हम तो मोहब्बत।

0: हम तो
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कला के तीसरे अध्याय में। आज हम जानेंगे वेणु माधुरी वह अद्भुत कला जिसमें श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। जब वज्र के बाल गोपियाँ और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस स्वर को सुनते तो वे सब अपने अपने कार्य भूलकर केवल उस दिव्य धुन में लीन हो जाते। कहा जाता है कि बांसुरी की तान में ऐसा आकर्षण था कि यमुना की लहरें भी थम जाती है, वृक्षों के पत्ते भी चीर हो जाते। वेणु माधुरी केवल संगीत नहीं थी, यह प्रेम और भक्ति का ऐसा माध्यम था जिसने जीवन मात्र को श्री कृष्ण के सानिध्य में बांध दिया। यह कला हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत केवल कानों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा श्री कृष्ण का गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्णा की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वह उनके हृदय की करुणा और प्रेम की ध्वनि थी। जब भी बांसुरी बजती वृंदावन की गोपियां अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ती, गाय चरना भूल जाती, यमुना की लहरें थम जाती और पक्षी भी मौन हो जाते। यह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम था। आज के इस कथा अंश में हम अनुभव करेंगे वही वेणु माधुरी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के प्रेम को बांध दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम अगला दूसरा प्यारा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। श्रोताओं, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो हर गोपी को लगता था कि यह स्वर केवल उसके लिए है। राधा तो इस स्थान में इतनी डूब जाती कि सांसारिक भानी फूल जाती। कृष्ण की बांसुरी ने वृंदावन को प्रेम और भक्ति का केंद्र बना दिया। ये लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। उनकी धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रेणु माधुरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं तो हम स्वयं बांसुरी बन जाते हैं और ईश्वर की ध्वनि हम में गूंजती है। बांसुरी का अर्थ है शून्यता। जैसे बांसुरी खोखली होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर से अहंकार और मोह को निकाल देना चाहिए, तभी ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। यह लीला हमें यह संदेश देती है कि भक्ति केवल बाहरी अंडरवर नहीं बल्कि भीतर तक की निर्मलता है। जब मन शून्य होता है तभी उसमें दिव्यता का स्वर गूंजता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वेणु कर कर गृही वंशी मधुर ध्वनिनम, अर्थात कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना सुंदर और मधुर है कि वह आत्मा को भी मोहित कर लेता है। ये श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण की बांसुरी केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। उसकी तान में ऐसा आकर्षण है कि जो मात्र अपने अहंकार और मोह को भूलकर केवल ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। यही है श्री कृष्ण की वेणु माधुरी या संगीत साधना बन जाता है और साधना ईश्वर से मिलन का मार्ग है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओ, ये थी तीसरी कला वेणु माधुरी। ये कला हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर से अहंकार को निकाल दे तो हम भी ईश्वर की बांसुरी बन सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की चौथी कला प्रीत माधुरी।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांट। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाए के चौथे अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं प्रीत माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण का प्रेम इतना सुंदर और गहन है कि हर हृदय की भक्ति और अनुराग भर उठता है। गोपियों के प्रति उनका स्नेह, मित्रों के प्रति उनका अपनापन और भक्तों के प्रति उनका असीम करुणा, यही है प्रीत माधुरी का सार। कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप केवल शक्ति या ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तो वह केवल दो आत्माओं का संगम नहीं होता बल्कि यह ब्रह्मांडीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। हर भक्त जब श्री कृष्ण को अपने चेतन के रूप में अनुभव करता है तो उसका जीवन भक्ति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस अध्याय में डूब जाए उस प्रीत माधुरी में जो हमें सिखाती है कि प्रेम ही ईश्वर का सबसे मधुर उपहार है। तो दोस्तों सुनते हैं प्रीत माधुरी कलाए का एक सुंदर गीत।

तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था, वह प्रेम वृंदावन की हर गोपी, हर जीव जंतु और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जन स्वार्थ था, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्थन था। इसी कारण श्री कृष्ण को प्रीत माधुरी की कला का प्रतीक माना जाता है। यह कला हमें सिखाती है कि ईश्वरीय प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समस्त सृष्टि को आलिंगन करता है। हर हृदय में, हर जीव में, हर कण में वही प्रेम व्याप्त है। तो दोस्तों, आइए इस अध्याय में हम अनुभव करें उस प्रीत माधुरी को, जो हमें बताती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही ईश्वर का सबसे सुंदर मधुर उपहार है।

तो दोस्तों, भागवत कथा में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण रासलीला करते थे तो हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ है। ये अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। हर भक्त को लगता है कि वह ईश्वर का सबसे प्रिय है और यही अनुभूति भक्ति को अमर बना देती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही है प्रीत माधुरी, वह कला जो हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ, सर्वव्यापी और अनंत है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गुंजती बांसुरी सब मिलकर यह संदेश देते हैं कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम केवल राधा के सीमित नहीं था, वह तो हर जीव, हर प्राणी और संपूर्ण प्रकृति तक फैला हुआ था। उनका प्रेम जनस्वार्थ या जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल करुणा और समर्पण था। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है और हर हृदय ईश्वर के आलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं प्रीत माधुरी कला का तीसरा और सुंदर गीत। तो दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो, सुनते रहिए और सुनाते रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, प्रीत माधुरी हमें सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ है आत्मा पूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देते हैं, तब हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। कृष्ण का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। यह प्रेम हमें बताता है कि भक्ति का मार्ग त्याग और समर्पण से ही प्रशस्त होता है। गोपियों का अनुराग, राधा का समर्पण और वृंदावन की हर ध्वनि में गुंजती बांसुरी सब यही दर्शाते हैं कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है आत्मा का परमात्मा में विलय। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जीवन का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तभी सच्चा आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण का एक प्यारा सा सुंदर गीत।

तो दोस्तों श्रीमद् भागवत में कहा गया है राधव माधव वंदे राधा माधव माधवम। इस श्लोक का भावार्थ है कि राधा और माधव का प्रेम अद्वितीय है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। जब भक्त अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो उसका जीवन प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण यह दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही है प्रीत माधुरी का सार, जहाँ प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि भक्ति का दर्शन बन जाता है। यह दर्शन हमें दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम

तो श्रोताओ, यह थी चौथी कला प्रीत माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही प्रेम हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला पड़ाव होगा गीता माधुरी, यानी श्री कृष्ण की मधुरता। वह गीत जिनमें भक्ति का रस है, प्रेम का संदेश है और जीवन को आनंद से भर देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य साधन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, सुनते रहो और सुनाते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 5वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं गीत माधुरी। यह वो माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के गीतों की मधुरता ने संपूर्ण वृंदावन को भक्ति और प्रेम से भर दिया। कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं थे, वे आत्मा को स्पर्श करने वाले दिव्य संदेश थे। उनकी वाणी में प्रेम था, करुणा थी और भक्ति का अमृत था। जब वे गाते थे तो गोपियाँ, ग्वाल बाल, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष और नदियाँ भी उस मधुरता में डूब जाते थे। यही है गीत माधुरी, जहाँ गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है।

तो श्रोताओं, श्री कृष्ण केवल बांसुरी वादक नहीं थे, वे अद्भुत गायक भी थे। अनेक गीतों में प्रेम, करुणा और भक्ति की गहराई थी। जब वे गाते थे तो वृंदावन की गोपियां मन प्रमुग्ध हो जाती, गायें उनके स्वर पर झूम उठती और संपूर्ण प्रकृति उस मधुरता में डूब जाती। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण के गीत हमें सिखाते हैं कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है जो हर हृदय की अलौकिक करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं गीत माधुरी का दूसरा और प्यारा सुर।

तो श्रोताओ, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण गाते थे तो हर जीव को लगता था कि यह गीत केवल उसके लिए है। गोपियाँ मन से मुक्त हो जाती और राधा तो उनके गीतों में इतनी डूब जाती थी कि समय और संसार का बहाने भूल जाती। कृष्ण के गीतों ने वृंदावन को केंद्र बना दिया। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्वर आत्मा को व्यक्तिगत रूप से छूता है। उनके गीत केवल ध्वनि नहीं थे बल्कि प्रेम और भक्ति का अमृत थे जो हर हृदय को अलोकित कर देते थे। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण का हर गीत हमें ये अनुभव करता है कि ईश्वर का प्रेम सर्वव्यापी है और हर जीव उनके

आलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। तो सुनते हैं एक सुंदर प्यारा गीत।

श्रोताओ, गीत माधुरी हमें ये सिखाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जब हम प्रेम और भक्ति से गाते हैं तो वह गीत सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। कृष्ण का गीत हमें यह संदेश देता है कि सच्चा संगीत वही है जो हृदय से निकलकर आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके गीतों में प्रेम की गहराई, करुणा की मधुरता और भक्ति का अमृत था। यही कारण है कि वृंदावन की हर ध्वनि, हर जीव और संपूर्ण प्रकृति उनके स्वर में डूबकर दिव्य आनंद का अनुभव करती थी। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग बनकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओ, यह थी पांचवी कला गीत माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि संगीत और गीत ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब गीत प्रेम और भक्ति से गाया जाता है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। तो दोस्तों, अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा नृत्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण के नृत्य की मधुरता। वह नृत्य जिसमें आनंद है, भक्ति है और जीवन को उत्सव बना देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण का नृत्य केवल कला नहीं बल्कि उत्सव है जो हर हृदय को दिव्य आनंद से भर देता है। तो दोस्तों, सुनने ना भूले रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।
1: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं। जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
1: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं। त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
1: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
4: पहला नशा, पहला खुमार।
1: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: एक्यूप्रेशर देताली। पात्र परिचय: वरदान, पंकज, दृष्टि, आकाश, वेदांत, यश और आदित्य। लेखिका: सुधापुरी।
1: चलो चलो, आज नुक्कड़ नाटक खेलते हैं।
2: हाँ, बड़ा मजा आएगा, और अगर अच्छा गया तो हम अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उन्हें दिखाएंगे।
1: ठीक है,
3: मैं भागकर अपनी दादी की ढोलक ले आता हूँ।
4: ठीक है, और मैं मंजीरे। बाकी हम सब तालियों की एक मधुर ताल बजा बजा कर बीच बीच में संगीत देंगे।
2: मतलब कैसे?
4: हम ऐसे ताली बजाएंगे ना, एक दो, एक दो तीन। ठीक है, देखो हम सब उधर से ताली बजाते बजाते आएंगे और इधर आकर एक गोला बना लेंगे, फिर अपनी अपनी बात कहेंगे एक एक बार बीच में आकर।
5: दीदी, उस दिन मैं कुछ कविताएं लिख रहा था, उन्हें भी इस्तेमाल कर लेंगे।
4: ठीक है, हम सब कुछ कुछ लिख के लाते हैं और फिर सबके आइडिया को मिलाकर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं।
1: दीदी, इस बार हम अपने नाटक में एक डांस भी रखेंगे।
2: हाँ, पर कोई लोक नृत्य।
3: ठीक है, सबसे मजा तो गरबा में आता है, मुझे तो छोटी छोटी डंडियों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है।
5: इस पूरे पूरे पार्क इसके लिए सजे होते होंगे।
4: हाँ, पता है कई पंडाल भी खास इसी नृत्य के लिए सजे होते हैं, और हर उम्र के लोग मिल मिल के साथ डांस करते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, बस जिस किसी को भी डांस आता है वो साथ में मिल जाता है।
2: तो हमारे राजस्थान में घूमर भी तो इसी तरह का नृत्य होता है।

0: हाँ, कई समानताएं हैं। दोनों गुजरात का गरबा और डांडिया वाल में सब मिलकर करते हैं।
1: पर एक बात मुझे भी पता है।
2: क्या? गरबा तो ताली बजा बजा कर होता है और डांडिया छोटी छोटी डंडियों से।
1: चलो, बात तय हुई, तब कल ही कुछ लिख के लाएंगे और हम उधर पार्क के उस कोने में रोज प्रैक्टिस किया करेंगे। पर आज का समय यूं ही वेस्ट नहीं करते, आओ हम तरह तरह की तालियां बजाने की प्रैक्टिस करेंगे।
3: हाँ दीदी, अलग अलग ट्यून निकाली जा सकती है तालियों की भी। देखो, मैं दो बार हाथ से मारूंगा और दो

0: टेबल पर तो देखो कैसा मजेदार लगता है।
1: ये सब करके तो मुझे सपने पिक्चर का वो गाना याद आ रहा है।

0: मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी तरह से बताया गया है कि हमारे प्रकृति में कितना मधुर संगीत भरा हुआ है।
1: बात फिर वही है ना, ध्यान।
2: आपका मतलब है जो हम योग में सीखते हैं?
1: और क्या, जब साइकिल चलानी सीख ली तो कोई भी मॉडल हो तो चला सकते हैं ना, क्यों?
3: या तैरना सीख लिया तो कोई भी तरण ताल हो, क्या फर्क पड़ता है?
4: या क्रिकेट आता हो तो कोई भी मैदान,
1: या बैडमिंटन आता हो तो कोई भी बैडमिंटन कोर्ट,
2: या पढ़ना आता हो तो कोई भी किताब।
1: अरे बस बस बस, लगे मस्करी करने।
2: पर एक बात है, ये हमारा ऐसे ताली बजाना तो मुझे योग के एक्यूप्रेशर की याद दिलाता है।
0: हाँ मुझे भी।
1: तो कई बार लोग किसी भी ताल पर ताली बजाकर बगीचों में भजन वगैरह गाते नहीं दिखते क्या?
2: तो ये भी एक तरीका हुआ तनाव दूर करने का।
1: वो तो है ही, अभी ही देख लो, हम सब ने अलग अलग तरीके से तालियां बजाई हैं, तो कितनी ताजगी सी भरी हुई लग रही है।
5: हाँ बिल्कुल ठीक,
4: सही है।
1: यानी अगर हम नुक्कड़ नाटक करते भी हैं, तो नाटक का नाटक और एक्यूप्रेशर का एक्यूप्रेशर होगा।
6: यानी एक पंथ दो काज।
3: जी नहीं, एक पंथ हजारों काज।
1: बच्चों ये हंसने की बात नहीं है, अगर हम कहें कि ताली बजाने से स्वास्थ्य को लाभ होता है तो यह मजाक लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल सही है और लाभदायक भी।
5: वो कैसे दीदी?
1: तुम सबने देखा होगा, आमतौर पर हम किसी को खुश करने या फिर प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाते हैं।
2: तो खुश और उत्साहित होने पर हम खुद भी तो ताली बजाते हैं।
6: बहुत से लोग गाते हुए भी ताली बजाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, ताली बजाने में मजा आता है, इसलिए बच्चे ताली बजाना पसंद करते हैं।
6: हाँ दीदी, मेरे पापा कहते हैं ताली बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।
1: वो इसलिए कि ताली बजाने से हाथों के सारे बिंदु दब जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में व्याप्त रोगों का सुधार होता है।
3: मेरी नानी रोज कई देर तक ताली बजाकर भजन करती है, कहती है ताली बजाने से आपको हृदय रोग और अस्थमा संबंधित समस्याओं से राहत पाने में बहुत मदद मिलती है।
4: और मेरे दादाजी कहते हैं हृदय, लिवर, फेफड़ों आदि से जुड़ी नसों के लिए यह बहुत मददगार साबित होता है।
1: वो इसलिए कि अगर आप ताली बजाते हैं तो नसों को बेहतर कार्य करने में मदद मिलती है, इससे आप बेहतर और अधिक आराम महसूस करते हैं।
4: मेरे स्पोर्ट्स के सर बता रहे थे कि ताली बजाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यह आपके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है, जो किसी भी बीमारी से आपके शरीर की रक्षा करते हैं।
1: वैसे भी यह बच्चों में कौशल बढ़ाने और एकेडमिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद तो करता ही है, मतलब ताली बजाना।
2: हमारी सोसाइटी में तो कुछ अंकल रोज ताली बजाते हैं। एक ने बताया था ताली बजाने से रक्त संचरण बढ़ता है और नसों तथा धमनियों से खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सारे अवरोध हट जाते हैं।
0: मैंने एक मैगजीन में भी पढ़ा था, अगर आप एक दिन 1500 बार ताली बजाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और यही नहीं, हाथ से ताली बजाने से बच्चों का हस्त कौशल सुधरता है, जिससे उनकी लिखावट साफ हो सकती है, वे बेहतर लिख सकते हैं और स्पेलिंग संबंधित त्रुटियां भी कम होती है।
1: अरे मैंने तो खुद करके देखा है, हर रोज भोजन करने के बाद 1 घंटे के लिए ताली बजाएं। इससे आप गर्मी महसूस करेंगे और आपके हाथों और पैरों पर पसीना भी आ सकता है। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेशन, अस्थमा, जुकाम, गठिया, सिर दर्द, अनिद्रा और बालों का झड़ना आदि बीमारियों का इलाज ताली बजाने से किया जा सकता है।
3: तो क्यों साथियों, अब तो हम कह सकते हैं ना।

0: क्या?
1: वही ताली बजाने से एक पंत और हजारों काज होते हैं।

जो गुजरे कैसे बताऊं आंखों से दिल में समा आ जा रे आ जरा।

आज़ादी आज़ादी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले. रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज.
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
3: भारत एक देश एक भावना से जुड़ा है, पर इसकी विशेषता अलग अलग भाषाओं और जीने के विभिन्न रंगों से है. आइए उन्हीं में से एक रंग में रंगने को आपको ले चलते हैं कर्नाटक.

कर्नाटक, जिसे कर्नाटका भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर में तेलंगाना, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती हैं। 30 जिलों के साथ यह देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ा है और यहाँ की राजधानी बेंगलुरु शहर है, जो भारत में हो रही त्वरित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी का अग्रणी योगदान करता है। कर्नाटक शब्द के उद्गम के कई व्याख्याओं में से सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या यह है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है, जिसके संयोजन करुनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहाँ के बयलु सीमा क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्षिण के पठारी भूमि से आया है। ब्रिटिश राज्य में यहाँ के लिए कर्नाटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी ओर की प्रायद्वीपीय भूमि के लिए प्रयुक्त है और मूलतः कर्नाटक शब्द का अपभ्रंश है। तो करुनाडु के लिए एक बहुत ही सुंदर गाना आपके सामने ले आए हैं, करुनाड़ ताई सदा चिन्मयी, आप सभी लोगों के लिए। हम कर रहे हैं कर्नाटक की यात्रा।

चलिए पलटते हैं अब कुछ पन्ने यहाँ के इतिहास की। कर्नाटक का विस्तृत इतिहास है जिसने समय के साथ कई करवटें बदली हैं। राज्य का प्रागैतिहासिक पाषाण युग तक जाता है तथा इसने कई युगों का विकास देखा है। राज्य में मध्य एवं नव पाषाण युगों के साक्ष्य भी पाए गए हैं। हड़प्पा में खोजा गया स्वर्ण कर्नाटक की खानों से निकला था जिसने इतिहासकारों को 3000 ईस्वी पूर्व के कर्नाटक और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध खोजने पर विवश किया। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से अधिकांश कर्नाटक राज्य मौर्य वंश के सम्राट अशोक के अधीन आने से पहले नंद वंश के अधीन रहा था। सातवाहन वंश को शासन की 4 शताब्दियां मिली जिनमें कर्नाटक के बड़े भूभाग पर शासन किया। सातवाहनों के शासन के पतन के साथ ही स्थानीय शासकों कदंब वंश एवं पश्चिम गंग वंश का उदय हुआ। उसके साथ ही क्षेत्र में स्वतंत्र राजनीतिक शक्तियां अस्तित्व में आई। कदंब वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने 345 ईस्वी में की और अपनी राजधानी बनवासी में बनाई एवं पश्चिम गंग वंश की स्थापना कोंगणी वर्मन माधव ने 350 में तलकाड़ में राजधानी के साथ की। आलमीदी शिलालेख एवं बनवासी में मिले एक 5वीं शताब्दी के ताम्र मुद्रा के अनुसार इस राज्य का प्रशासन कन्नड़ भाषा में प्रयोग करने वाले प्रथम दृष्टांत बने। इन राजवंशों के उपरांत शाही कन्नड़ साम्राज्य बादामी चौलुक्य वंश मान्यखेत के राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य वंश आए जिन्होंने दक्खन के बड़े भाग पर शासन किया और राजधानियां वर्तमान कर्नाटक में बनाई। पश्चिमी चालुक्यों ने एक अनोखी चालुक्य स्थापत्य कला की शैली भी विकसित की। इसके साथ ही उन्होंने

कन्नड़ साहित्य का भी विकास किया, जो आगे चलकर 12वीं शताब्दी में होयसल वंश के कला व साहित्य योगदान का आधार बना। आधुनिक कर्नाटक के भागों पर 990 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच चोल वंश ने अधिकार किया। अधिकरण की प्रक्रिया का आरंभ राजराज चोल प्रथम ने आरंभ किया और ये काम उसके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासन तक चला। प्रथम सहस्राब्दी के आरंभ में ही होयसल वंश का क्षेत्र में पुनरोद्भव हुआ। इसी समय होयसल स्थापत्य पनपा, साथ ही अनुपम कन्नड़ संगीत और होयसल स्थापत्य शैली के मंदिर आदि बने। होयसल साम्राज्य ने अपने शासन के विस्तार के तहत आधुनिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के छोटे भागों को विलय किया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में हरिहर और बुक्कर आय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की एवं वर्तमान बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर होसनपट्टा, बाद में जिसका नाम विजयनगर पड़ा और आज जिसे हम हम्पी कहते हैं, में अपनी राजधानी बसाई। इस साम्राज्य ने अगली 2 शताब्दियों में मुस्लिम शासकों के दक्षिण भारत में विस्तार पर रोक लगाए रखी। 1565 में समस्त दक्षिण भारत सहित कर्नाटक ने एक बड़े राजनीतिक बदलाव देखा, जिसमें विजयनगर साम्राज्य तालिकोट के युद्ध में हार के बाद इस्लामी सल्तनतों के अधीन हो गया। बीदर के बहमनी सुल्तान की मृत्यु उपरांत उदय हुए बीजापुर सल्तनत ने जल्द ही दक्खन पर अधिकार कर लिया और 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य से मात होने तक बनाए रखा। बहमनी और बीजापुर के शासकों ने उर्दू एवं पारसी साहित्य तथा भारतीय पुनरोद्धार स्थापत्य कला, जिसे इंडो सैरसैनिक कहा जाता है, उसको भी बढ़ावा दिया। इस शैली का प्रधान उदाहरण है गोल गुंबज, जो बीजापुर में है, और ऐसा माना जाता है कि गोल गुंबज दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। मैसूर राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य की जागीर थी, कुछ समय के लिए स्वतंत्र रही। कृष्णराज वोडेयर द्वितीय की मृत्यु के बाद मैसूर सेना के सेनापति हैदर अली ने शासन संभाला। उसकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित किया। यूरोप के साम्राज्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए पहले हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ने 4 एंग्लो मैसूर युद्ध किए। अंग्रेजों के साथ ये युद्ध टीपू सुल्तान के लिए काफी मुश्किल भरे रहे। इन 4 युद्धों के अंत में 4थे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में हुई और मैसूर ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र रियासत बना, जिनके वोडेयर राजवंश 1950 तक शासक रहे। उपनिवेशी शक्तियों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टीपू सुल्तान अग्रणी योद्धा माने जाते हैं। अंग्रेजों की डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स की नीति के कारण भारतीय रियासतों में बढ़ रहे असंतोष और विरोध से कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में सन 1830 में कित्तूर की रानी चन्नम्मा, संगोल्ली रायण्णा और अन्य विद्रोह को जन्म दे चुके थे। 1857 के क्रांति के लगभग 3 दशक पहले ही स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ चुका था और बिल्कुल उसी कारण से जिस कारण से झांसी की रानी ने युद्ध छेड़ा। आगे चलकर मुंडरगी भीमराव, भास्कर राव भावे, हलगली बेडस, राजा वेंकटप्पा नायक और अन्य ने इसकी मुहिम संभाली। 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का आंदोलन जोर पकड़ चुका था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कारनाड सदाशिवराव, आलूरु वेंकटराया, एस निजलिंगप्पा, केंगल हनुमंतैया, निट्टूर श्रीनिवास राव और अन्य ने आजादी के मशाल को स्वतंत्रता मिलने तक चलाए रखा। आइए आजादी के इन महान रखवालों के लिए एक बहुत ही सुंदर कन्नड़ गीत हम आपके सामने ले आ रहे हैं। हिंदुस्तानवु यंदु मरेयद भारत रत्नवु जन्मे सली। तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान भूल न सके ऐसा एक भारत रत्न यहाँ जन्मे। इस कन्नड़ गीत के साथ हम अगले मोड़ पे फिर मिलते हैं।

शर्मा जैसे पारंगतों के प्रयास से मैसूर शैली का भरतनाट्यम आज शिखर पर पहुंचा है और इस कारण ही कर्नाटक विशेषकर बैंगलोर भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध प्रधान केंद्रों में गिना जाता है। कर्नाटक का विश्व स्तरीय शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान है, जहां संगीत की कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैलियां स्थान पाती हैं। राज्य में दोनों ही शैलियों के पारंगत कलाकार हुए हैं। वैसे कर्नाटक संगीत में कर्नाटक नाम कर्नाटक राज्य विशेष का नहीं है, बल्कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत को दिया गया नाम है, जिसे कर्नाटिक संगीत कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के हरिदास आंदोलन कर्नाटक संगीत के विकास में अभिन्न योगदान देती हैं। सम्मानित हरिदासों में से एक पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत पितामह की उपाधि दी गई है। कर्नाटक के संगीत के कई प्रसिद्ध कलाकार जैसे गंगूबाई हानगल, मल्लिकार्जुन मंसूर, भारत रत्न भीमसेन जोशी, बसवराज राजगुरु, सवाई गंधर्व और कई अन्य कर्नाटक राज्य से हैं, और इनमें से कुछ को कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया हुआ है। यहाँ चित्रकला का भी बहुत महत्व रहा है। मैसूर चित्रकला शैली ने अनेक श्रेष्ठ चित्रकार दिए हैं, जिनमें से सुंदरिया, तंजावुर कोंडैया, बी वेंकटप्पा और केशवैया हैं। राजा रवि वर्मा के बनाए धार्मिक चित्र पूरे भारत और विश्व में आज भी पूजा अर्चना हेतु प्रयोग होते हैं। मैसूर चित्रकला की शिक्षा हेतु चित्रकला परिषद नामक संगठन यहाँ विशेष रूप से कार्यरत है। कर्नाटक की धरोहर के बारे में इतना सुनने के बाद अब वक्त है एक और बहुत ही प्यारा कन्नड़ गाना सुनने का। अब हम आपको सुनाने वाले हैं नावाड़ वनुड़िये कन्नड़ अनुड़ी, एक बहुत ही मशहूर कन्नड़ गीत है जिसे फिल्म से लिया गया है, और इस गीत का मतलब है जो हम बोलते हैं वो कन्नड़ नुड़ी है, यानी कन्नड़ भाषा है, और जहां हम रहते हैं वो गंधदगुड़ी है, यानी कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन मिलता है। तो चंदन की लकड़ी के लिए मशहूर कर्नाटक के जंगलों की महिमा इस गाने में है, यानी चंदन की लकड़ी मिलने वाले जंगल कर्नाटक में सबसे अधिक हैं। इस गाने का मतलब आप आगे सुनते जाएंगे तो समझते जाएंगे।

कर्नाटक में महिलाओं की परंपरागत भूषा साड़ी है। कोडगु की महिलाएं एक विशेष प्रकार से साड़ी पहनती हैं, जो शेष कर्नाटक से कुछ भिन्न है। राज्य के पुरुषों का परंपरागत पहनावा धोती है, जिसे यहाँ पंचे कहा जाता है। वैसे शहरी क्षेत्रों में लोग प्रायः कमीज पतलून और सलवार कमीज पहना करते हैं। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में विशेष शैली की पगड़ी पहनी जाती है, जिसे मैसूरी पेटा कहा जाता है या मैसूर पेटा कहा जाता है, और उत्तरी क्षेत्रों में राजस्थानी शैली जैसी पगड़ी पहनी जाती है, जिसे पगड़ी या पटगा कहा जाता है। कृषि भारत की नींव है और इसी तरह कर्नाटक की भी नींव है, क्योंकि यहाँ के लगभग 67% जनसंख्या ग्रामीण है। कर्नाटक की 60% भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है, फिर दूसरे स्थानों पर काली मिट्टी पाई जाती है। चावल और रागी राज्य के प्रमुख खाद्य में आते हैं और जोड़द रोटी उत्तरी कर्नाटक के प्रधान खाद्य हैं। इनके अलावा तटीय क्षेत्रों एवं कोडगु में अपनी विशिष्ट खाद्य शैली होती है। बिसी बेले भात, जोड़द रोटी, रागी मुद्दे, उपमा, मसाला डोसा, मद्दूरु वड़ा कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं। और मिष्ठान में यहाँ मैसूर पाक, बेलगामी कुंदा, गोका करदंतु, धारवाड़ पेड़ा मशहूर हैं। चलिए कर्नाटक में धर्म के बारे में बात करें। कर्नाटक में सभी धर्मों का व्यापन साथ साथ है। यहाँ आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी को भारत पर्यंत 4 पीठों में से दक्षिण पीठ हेतु चुना था। विशिष्ट अद्वैत के अग्रणी व्याख्याता रामानुजाचार्य ने मेलकोटे में कई वर्ष व्यतीत किए थे, जहाँ इन्होंने चलुव नारायण मंदिर और एक सुव्यवस्थित मठ की स्थापना की। 12वीं शताब्दी में जातिवाद और अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध स्वरूप उत्तरी कर्नाटक में वीर शैव धर्म का उदय हुआ, जिसे कल्याण की क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन में अग्रणी व्यक्तित्वों में जगत ज्योति बसवण्णन, अक्क महादेवी और अल्लम प्रभु थे, जिन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जहाँ शक्ति विशिष्टाद्वैत का उदय हुआ। यही आगे चलकर लिंगायत मत का आधार बना, जिसके आज कई लाख अनुयायी हैं। कर्नाटक के सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचे में जैन साहित्य और दर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ इस्लाम का आरंभिक उदय भारत के पश्चिमी छोर पर 10वीं शताब्दी के करीब हुआ। इस धर्म को कर्नाटक में बहमनी साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत का संरक्षण मिला। और गौर करने वाली बात यह भी है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जब भारत की यात्रा पर निकले तो यहाँ कर्नाटक के बीदर तक आए। कर्नाटक में त्योहार हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है मैसूर का दशहरा, जिसे राज्य में नाडु हब्बा दशहरा कहा जाता है, जिसे राज्य के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साथ ही युगादि यानी कन्नड़ नववर्ष, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, बसव जयंती, दीपावली आदि हैं। जब हम त्योहारों की बात ही कर रहे हैं और दिवाली याद आई है, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो दिया जलाने वाला है। गाने के बोल हैं हच्चेवु कन्नड़ दीपा, यानी हम जलाएंगे कन्नड़ का दीपक। तो कन्नड़ भाषा में एक बहुत ही सुंदर सा गाना, जिसे बहुत ही सुंदर संगीत के साथ सजाया गया है, आपके दिए जलाने के लिए आ रहा है। हच्चेवु कन्नड़ दीपा आप सभी लोगों के लिए।

अब इतने सुंदर गाने को सुनने के बाद दिल करता है कि और गाने सुना जाए, मगर सुनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। चलिए अब चलते हैं शिक्षा जगत की ओर। कर्नाटक भारत के शैक्षिक रूप से विकसित राज्यों में से एक है। यहाँ भारत के कुछ प्रतिष्ठित शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान भी स्थित हैं, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय प्रबंध संस्थान।

Indian Institute of Management, Rashtriya Pradyogiki Sansthan, National Institute of Technology, Karnatak, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जिसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ये सब स्थित हैं। और साथ ही बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, जिसे अक्सर गार्डन सिटी कहा जाता है, वो अपने आईटी और बीटी इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी और जीव वैज्ञानिकी के लिए मशहूर है और इसीलिए इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बेंगलोर की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसके कारण बेंगलोर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से। कर्नाटक पर्यटन का एक बहुत सुंदर केंद्र भी है। विस्तृत भूगोल, प्राकृतिक सौंदर्य एवं लंबे इतिहास के कारण कर्नाटक राज्य बड़ी संख्या में पर्यटन आकर्षणों से परिपूर्ण है। राज्य में जहाँ एक ओर प्राचीन शिल्पकला से परिपूर्ण मंदिर है, तो वहीं आधुनिक नगर भी हैं। जहाँ एक ओर नैसर्गिक पर्वतमालाएं हैं, तो वहीं अनान्वेषित वन संपदा भी है। जहाँ व्यस्त व्यावसायिक कार्यकलापों में उलझे शहरी मार्ग हैं, वहीं दूसरे ओर लंबे सुनहरे रेतीले एवं शांत सागर तट भी हैं। कर्नाटक राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय संरक्षित उद्यान एवं वन है, और साथ ही यहाँ राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय द्वारा संरक्षित कई स्मारक भी हैं। राज्य के मैसूर शहर में स्थित अंबा विलास भारत का सबसे बड़ा महल इतना आलीशान एवं खूबसूरत बना है कि उसे विश्व के 10 सुंदर महलों में गिना जाता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में आने वाले तथा दक्षिणी जिलों में प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जिनमें कुद्रेमुख, मडिकेरी और आगुम्बे आते हैं। राज्य के 25 वन्य जीव अभयारण्य एवं 5 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं: बंडीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष तथा पट्टदकल के मंदिर और प्राचीन पुरातात्विक अवशेष यूनेस्को विश्व धरोहर चुने जा चुके हैं। इसके साथ ही बादामी के गुफा मंदिर तथा ऐहोले के पाषाण मंदिर बादामी चालुक्य स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं तथा प्रमुख पर्यटक आकर्षण बने हुए हैं। यहाँ बने गोल गुंबज और इब्राहिम रोजा दक्खन सल्तनत स्थापत्य शैली के अद्भुत उदाहरण हैं। श्रवण बेलगुला स्थित गोमटेश्वर की मूर्ति विश्व की सर्वोच्च एकाश्म प्रतिमा है। कर्नाटक के जलप्रपात एवं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान विश्व के 1001 प्राकृतिक आश्चर्य में गिने गए हैं तथा यहाँ स्थित जोग प्रपात को भारत के सबसे ऊंचे एकधारीय जलप्रपात के रूप में देखा जाता है। साथ में गोकाक प्रपात, उंचल्ली प्रपात, मागोड़ प्रपात, एब्बे प्रपात एवं शिवन समुद्रम जलप्रपात सहित अन्य प्रसिद्ध जलप्रपातों की सूची इस राज्य में सम्मिलित की गई है। और जब हम बात कर रहे हैं जोग के जलप्रपात की, तो एक बहुत ही सुंदर गाना है जिसे निसार अहमद ने लिखा है, और इस गाने के बोल हैं जोग दसिरी बेड़की नल्ली। इस खूबसूरत गाने से हम आपको ले जाना चाहते हैं उस विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात की ओर। आइए सुनते हैं इस गाने को, फिर लौटते हैं अगली मोड़ पर।

अब इस जलप्रपात के बाद हम वापस लौटते हैं कर्नाटक के सागर तट पर। यहाँ अनेक खूबसूरत सागर तट हैं, जिनमें मुरुडेश्वर, गोकर्ण एवं कारवार सागर तट प्रमुख हैं। इनके साथ साथ कर्नाटक धार्मिक महत्व के अनेक स्थलों का भी केंद्र रहा है। यहाँ के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, शिरसी का मारिकाम्बा मंदिर, धर्मस्थल का श्री मंजुनाथ मंदिर, कुक्के में श्री सुब्रमण्यम मंदिर तथा श्रृंगेरी स्थित शारदाम्बा मंदिर है, जो देश भर से ढेरों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ जैन धर्म के ऐतिहासिक स्मारक श्रवण बेलगुड़ा, मुड़बिद्री एवं कारकड़ा भी हैं। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना शासन छोड़ा तो वह संन्यास लेकर श्रवण बेलगुड़ा आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। कर्नाटक के इतिहास के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, और वैसे ही यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में भी और संस्कृति के बारे में भी। इस एक घंटे में हम आपको कर्नाटक की यात्रा कराने ले गए, मगर इस यात्रा के साथ ही कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिसे भूलना नहीं चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर भारत के उन कुछ शहरों में था जिन्हें सबसे पहले बिजली मिलने का गौरव मिला, और साथ ही भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन शिवन समुद्रम में बना, और इसके साथ ही भारतीय रेडियो के इतिहास के साथ भी कर्नाटक का इतिहास जुड़ा हुआ है। कर्नाटक का भारतीय रेडियो के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। भारत का प्रथम निजी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी सन 1935 में प्रोफेसर वीएम गोपाल स्वामी द्वारा मैसूर में आरंभ किया गया था। यह रेडियो स्टेशन काफी लोकप्रिय रहा और बाद में इसे स्थानीय

नगर पालिका ने ले लिया था। 1955 में इसे ऑल इंडिया रेडियो द्वारा अधिग्रहण कर बैंगलोर ले जाया गया। इसके दो वर्ष उपरांत AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो ने अपना नाम बदलकर इसका मूल नाम आकाशवाणी ही अपना लिया और साथ ही भारत का पहला FM स्टेशन रेडियो सिटी बैंगलोर शहर में लाया गया और इसके पश्चात इसे भारत के दूसरे शहरों में भी FM रेडियो स्टेशन का लाइसेंस दिया गया और FM की शुरुआत के साथ भी कर्नाटक का बहुत गहरा कनेक्शन है।

0: एफ एम की दुनिया यानी एफ एम के रेडियो स्टेशन के लिए भी कर्नाटक का संबंध काफी खास है। कर्नाटक की इस यात्रा पर आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा और संगीत का भी मजा लिया, ऐसा मैं समझता हूँ। कर्नाटक में घूमने के लिए तो बहुत कुछ है ही, मगर साथ में जानने के लिए भी बहुत कुछ है।
1: बदलागुरु ही लोका नी बदलागरे नी बदलागरे सरियागुरु ही समाजा नी मोदलागरे मोदलागरे नव भारत व कट्टुव आणय माडोण जनगणमन मोळगली।

0: जय हिंद।
1: पर आज इस सफर में हमें यही अलविदा कहना होगा। आगे बहुत कुछ है, 29 राज्य, एक राष्ट्र और एक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself.

0: सफर आरजे सनी के साथ।
1: खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं खाबों का सफर। आइए आज के इस खाबों का सफर को बनाते हैं बहुत ही यादगार और बहुत ही खूबसूरत। और आप सभी लोगों का प्यार मिलता है तो और खुशी होती है हमें, और हमें आपके मैसेजेस पढ़कर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो बातें आप सुनाते हैं हमें बताते हैं तो सुनकर लगता है कि कहीं न कहीं ये प्रोग्राम जिसमें हम लोग 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज आपको सुनाते हैं वो कहीं न कहीं आपके दिल को छू जाते हैं। भले आज बहुत समय हो गया है लेकिन फिर भी आज कहीं न कहीं वो गीत, वो संगीतकार की बातें या फिर वो नगमे जो है कहीं न कहीं हमारे दिल में घर बना देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आज हम सुनाने वाले हैं। यानी गीत तो सब अच्छे ही होते हैं लेकिन फिर भी कुछ खास गीत होते हैं जो अपने आप को एक अलग मोड़ पे ले जाते हैं। तो आज के शो में के अक्षर वाले ही सारे गीत सुनने को मिलेगा। आज के शो में कई बार होता है कि व्यक्ति कई मुश्किल में होता है और मुश्किल के दौर में जब भी कोई व्यक्ति कुछ सोच में होता है और उस समय किसी ने आवाज दी या कोई बुला लेता है तो एक हलचल जो है रुक जाती है हमारे मन की और हमारा डाइवर्शन होता है और हमें अच्छा भी लगता है। नहीं तो कई बार होता है कि अगर हम किसी दुविधा में फंसे हुए हैं और मन जो है किसी चीज के अंदर डूबा हुआ है और हम उससे निकल नहीं पाते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, मायूस चेहरे पे छाया हुआ रहता है। मायूसी के समय में अगर कोई आवाज दे या किसी की अच्छी यादें हमारे बीच में आ जाए या किसी अच्छे इंसान की याद आ जाए तो कितना खूबसूरत वो समा बन जाता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते। तो आइए ऐसा ही कुछ भाव भरा एक गीत आपको मैं सुनाने वाला हूं, कोई दूर से आवाज दे चले आओ। शकील बदाही साहब का लिखा हुआ, गीता दत्त का गाया, हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये खूबसूरत फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम का, जो 1962 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, इसमें कलाकार थे मीना कुमारी, गुरुदत्त, वैदा रेमन और सपुन। और ये फिल्म में जो कहानी थी एक अय्याशी आदमी की पत्नी की कहानी है जिसका पति वेश्या गृह में रात बिताता है। घर के नौकर भूतनाथ के साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है। तो इस तरह का ये एक अलग जो है साहेब बीबी और गुलाम, जैसे ही नाम है वैसे ही फिल्मों में इसको पिक्चराइज किया गया है। तो तीनों ही मुख्य रोल है इसमें और तीनों का ही किरदार बड़े अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया है। चलिए फिल्म देखने के बाद आपको पता ही चलेगा, लेकिन अब गीत का आनंद उठाते हैं जो कि अक्सर से शुरू होता है, कोई दूर से आवाज दे चले आओ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम बैक खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना 60s का, साहेब बीवी और गुलाम। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक फिल्म आई थी 60s में ही जिसका नाम था झुमरू। झुमरू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सुनकर आपको भी लगता होगा कि ये एक आवारा लड़के की या फिर एक ऐसे अनपढ़ गवार लड़के की कहानी होगी। झुमरू नाम का एक लड़का होता है, उसे एक लड़की प्यार करती है और कुछ समय ऐसा हो जाता है कि वो चीजें थोड़ी सी एक बीच में गैप पड़ जाता है। और एक लंबी छुट्टी के बाद जब वो लड़की वापस आती है तो उनका जो रिश्ता है वो बिखर गया होता है और रिश्ते की सच्चाई का पता चलता है। तो ऐसी ये कहानी बताई गई है झुमरू नाम के इस फिल्म में। 1960 में ये रिलीज हुई थी। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसके गीत लिखे थे, किशोर कुमार जी ने इसे गाया था और ये फिल्म भी अपने आप में एक खास पहचान बनाई थी 1960s में। इसमें कलाकार के रूप में भी किशोर कुमार, अनूप खेर और मधुभाला ये तीन कलाकार थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम इसमें किया है। तो आइए मैं इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाता हूँ। जैसे इस कहानी है, कहानी पर इसको कह सकते हैं आप, वैसे ही इस गीत को उस भाव में डालने की कोशिश की है। जैसे कि अल्फाज हैं, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। तो आइए मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत किशोरदा की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आइए 1950s का ओल्ड मेलोडी से आप सुन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं के अक्षर से, वो भी स्पेशली कोई हम दम न रहा। ये खूबसूरत गाना आपने सुना, अगर आप ध्यान से सुना होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिल को गाना बहुत ही खिंचाव करता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, लेकिन उसके पहले इस फिल्म के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दोस्ती। दोस्ती कमाल की फिल्म थी जो 64 में आई थी। दिव्यांग लोगों की कहानी थी, दो दोस्तों की कहानी, जो दिव्यांग है उन दो दोस्तों की कहानी है, और बड़ा ही क्लाइमेक्स इसमें बताया गया, और दो दोस्तों का प्यार कैसे उनका मिलना होता है और कैसे एक दूसरे के वो सहयोगी बनते हैं, सपोर्टर्स बनते हैं। फिल्म के गाने तो खूबसूरत थे ही, लेकिन इन दोनों का एक्शन भी, इनकी जो बातें थी, इनके जो हाव भाव थे, वो फिल्मों में बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया गया था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन बहुत जबरदस्त हिट फिल्म रही। अगर आपने देखा होगा तो आपको जरूर उस फिल्म के बारे में आज भी आपके पास वो यादें बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण जवान लड़का अपने माता पिता और अपने पैर खो देता है, और एक अंधे लड़के से दोस्ती होती है। साथ में वे पैसे कमाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे करते हैं, ये इसमें दिखाया गया है, और वो कैसे आगे बढ़ते हैं, ये चीजें यहां पर बताई गई। तो 64 में रिलीज हुई ये एक फिल्म दोस्ती, उसका एक गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और ये गाना भी मोटिवेशन देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं आप इन गीतों को जब सुनेंगे तो आपको, जहां भी आपको मायूसी आती है या जहां भी आपको लगता है कि आपके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जरूर इस गीत को सुनिए, आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेंगे। ये भी गाना मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा है और आवाज दिया है मोहम्मद रफी साहब ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना आपके लिए खास।

0: सुन रहे हैं रेडियो पूनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। इस फिल्म के कलाकार थे सुधीर कुमार, संजय खान, सुशील कुमार और लीला चिटनीस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगा कि एक फिल्म आई थी 66 में जिसका नाम था बहारे फिर भी आएगी। ये फिल्म भी अपने आप में कुछ खास थी। तनुजा, बाला सिन्हा, जॉनी वॉकर, वैदा रेमन और धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म बहारे फिर भी आएगी। तो यहाँ पर इस बहारे फिर भी आएगी इस फिल्म में एक ऐसे युवक की कहानी बताया गया है जिसे दो बहनें प्यार करती हैं और उसमें इस युवक को जो है काफी कश्मकश होता है। तो कई बार समस्याएं बहुत ही कॉमन होती हैं लेकिन जब वो सामने आती है तो बड़ी मुश्किल लगती हैं। तो ऐसे ही कुछ ये इस फिल्म में बताया गया है। तो आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है इस फिल्म का, कोई कह दे कह दे कह दे, इस एक भाव भरा गीत है आशा भोसले की आवाज में। ओपी नैयर साहब का संगीत बहारे फिर भी आएगी इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, दूर गगन की छाव में। 1964 में ही ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जो गीतकार हैं वो शैलेंद्र साहब थे और किशोर दा ने ही इस फिल्म के गीत गाए थे और संगीत भी उन्होंने दिया था। इस फिल्म के कलाकार भी किशोर कुमार, अमित कुमार और सुप्रिया देवी, ऐसे तीनों कलाकार मिलकर इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया था। और ये फिल्म का ये गीत जो के अक्षर से शुरू होता है, अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना किशोरदा की आवाज में। और अब आगे बढ़ते हैं, एक फिल्म आई थी 66 में जिसका नाम था लव इन टोक्यो। यहाँ पर गायत्री देवी नाम की एक महिला है, उसका बेटा है अशोक, और वो चाहती है कि अशोक की शादी वो अपने रिश्ते या अपने पहचान के लड़के से वो करा सके। लेकिन अशोक का जो है किसी और लड़की से प्यार हो जाता है, तो ये चीजें जो है बड़ी मुश्किलें पैदा तो करती हैं, लेकिन मुश्किल तब आता है जब अशोक का एक दुर्घटना में उसकी आंखें चली जाती हैं। तो ऐसा ही इस फिल्म का सीन है, इस फिल्म की स्टोरी इस तरह की बताई

रही हैं लव इन टोक्यो 1966 का। आपको अब ये गीत सुनाते हैं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, कोई मत वाला आए मेरे द्वार। जी हाँ, शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। ये रहा गाना आपके लिए।

0: और FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, लव इन टोक्यो का। नाम सुनकर ही बड़ा ही अच्छा लगता था। ये नाम अपने आप में बहुत ही पॉपुलर रहा उस जमाने में। और इस फिल्म के कलाकार थे आशा पारेख, जॉय मुखर्जी, मोहम्मद अली और प्राण। तो चलिए आप बात करते हैं 1967 का एक और फिल्म जिसका नाम था पत्थर के सनम। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी। एक बहुत ही खूबसूरत जो है ट्रेजेडी बताई गई थी लव स्टोरी के साथ साथ, बहुत ही जैसे कि एक प्यार की क्या कहते हैं कश्मकश वाली बातें इसमें बताई गई है। मनोज कुमार, वैदारेमन, मुमताज और प्राण पर पिक्चराइज किया गया है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा एक गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जैसे कि ये। कोई नहीं है फिर भी है मुझको। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक प्यार की जो भाव है इस गीत के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं, फिर मिलते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फर्स्ट बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं 50s और 60s का, और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। चलिए, कितनी अच्छी अच्छे गीत जो है प्यार के भाव के अलग अलग रंग हम लोग देख रहे हैं गीतों के माध्यम से। और 60s की बात करें तो ऐसे ही समय में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल दिया दर्द लिया। ये फिल्म भी अपने आप में एक नई अनूठी दास्ता पेश करता है प्यार का लोगों के बीच में, और 66 में ये बहुत ही पॉपुलर रही। और ये एक जमींदार जो है एक लड़के को गोद लेता है, और गोद लेने के बाद उसकी बेटी से ही उसका प्यार होता है। तो ऐसे में जमींदार को बड़ा ही गुस्सा आता है और उसमें क्लाइमैक्स शुरू हो जाती है। ये स्टोरी इस फिल्म का है दिल दिया दर्द लिया। जैसे टाइटल है उसी भाव का ये स्टोरी है। मैं स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप फिल्म देखा होगा तो आपको पता चलेगा। नहीं देखा हो तो कभी देख लीजिए समय मिलने पर। और इसमें दिलीप कुमार, वैदा रमन, प्राण और जॉनी वॉकर ने काम किया है। और इसी फिल्म का एक गीत है जैसे कि ये

जी हाँ, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बहुत ही खूबसूरत गाना है और इस गाने को लिखा है शकील बदाई साहब ने, मोहम्मद रफी साहब ने इसको आवाज दिया है और नौशाद साहब ने बहुत ही खूबसूरत संगीत से इस गीत को सजाया है। तो आइए इस गीत का लुत्फ उठाते हैं

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं। जी हाँ, वक्त हो गया है आपसे इजाजत चाहने का, लेकिन जाते जाते भी मैं एक और खूबसूरत गीत आपके नाम छोड़े जाऊंगा। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माया। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये एक हिंदी भाषी बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही। देवानंद, माला सिन्हा, ललिता पवार और जयंत इस फिल्म के कलाकार रहे और इस फिल्म का ये गीत जो है बहुत पॉपुलर रहा।

कोई सोने का दिल वाला। जी हाँ, मैं नहीं गाऊंगा, आपको गाना ही सुनाऊंगा। बजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, सलील चौधरी का बेहद खूबसूरत संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत जाते जाते आप सब के लिए 1960s का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ख्वाबों के सफर में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी।
0: आज पियो हंस के दो घूंट थूम रख के,
1: लो आज पियो हंस के दो घूंट।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी,
0: आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के, साल भर इसका नशा रहेगा,
1: जो आज मिले मिले, जो आज मिले।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया, तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया, मेरे एहसास में आग लगा दी।

इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। मेरे एहसास में आग लगा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत

0: रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जख्म है और जान इश्क है, इश्क सर मत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है पूर है, बात को बुत और बुत को

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

0: पति शराब में धुत और पत्नी बस रोती रहती है। एक बार सोसाइटी के सभी लोगों ने मिलकर बात करने की भी कोशिश की थी, परंतु थोड़े दिन तक तो उसका असर रहा, फिर सब कुछ वहीं का वहीं। सभी लोग परेशान हैं, क्या किया जाए समझ ही नहीं आता।
1: शराब एक भयानक आदत है मनु, शुरुआत होती है बस एक बार पीने से और कब लत लग जाती है पता ही नहीं चलता। न जाने कितने घर इसी कारण बर्बाद हो गए। तुम एक काम करो, अपने पिताजी से कहो कि वे दिन में अकेले जाकर उस व्यक्ति से बात करें, और यदि वो छोड़ने को राजी हो जाता है तो शराब छोड़ने की दवाई के साथ साथ मेडिटेशन सिखाने भी लेकर जाएं।
0: अच्छा, लेकिन अगर वो दवाई लेंगे तो फिर मेडिटेशन की क्या जरूरत है?
1: मेडिटेशन तो दवाई से भी जरूरी है, क्योंकि दवाई सिर्फ तन को ठीक करती और बीमारी असली मन में है। उसे ठीक करने के लिए मेडिटेशन की अति जरूरत है। मेडिटेशन तो अनिवार्य है।
0: ठीक है, आज ही मैं ऐसा करूंगी। अच्छा पुराना स्तंभ जी, अब आप बाल गंगाधर तिलक की आगे की कहानी सुनाइए ना।
1: हाँ जरूर जरूर सुनाता हूँ, तो सुनो। सन 1888 ईस्वी के दौरान तिलक और आगरकर के बीच सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों पर मतभेद शुरू हो गए थे मनु। इसके कारण श्री आगरकर ने केसरी के संपादक पद से भी इस्तीफा दे दिया और अपने पत्र सुधारक का प्रकाशन शुरू किया।
0: अच्छा,
1: इसी समय ये स्पष्ट हो गया कि स्कूल और कॉलेज और समाचार पत्रों के हित एक से नहीं है, सो उनका विभाजन कर दिया गया, जिसके अनुसार आर्यभूषण प्रेस और दो समाचार पत्र तिलक, प्रोफेसर केलकर और H.N. गोखले की संपत्ति बन गए। प्रोफेसर केलकर दोनों पत्रों के प्रभारी संपादक बना दिए गए।
0: अच्छा,
1: ये स्थिति सन 1890 ईस्वी तक रही और अनिश्चित काल तक चलती रही। अगर नए मतभेदों के कारण संबंधों की दरार अधिक नहीं बढ़ती, ये मतभेद मुख्य रूप से उन सिद्धांतों के बारे में थे जिनसे आजीवन सदस्यों का आचरण और स्कूल का प्रबंध नियंत्रित होता था। ये स्थिति सन 1889 ईस्वी में प्रोफेसर गोखले के सार्वजनिक सभा का सदस्य बनने से पैदा हुई।
0: अच्छा,
1: तिलक शुरू से ही इस मत के थे कि आजीवन सदस्यों को जेसुइट पादरियों की तरह सादा जीवन बिताना चाहिए और अपना संपूर्ण समय और ऊर्जा अध्यापन कार्य में लगानी चाहिए। उनके अधिकतर सहयोगी इस बात से सहमत नहीं थे।
0: अच्छा,
1: तिलक के विचारों से उनके अधिकतर सहयोगियों के सहमत न होने के कारण तिलक ने नवंबर सन 1890 ईस्वी में अपना त्याग पत्र भेजकर सोसाइटी से अपने सभी संबंध समाप्त कर लिए। प्रोफेसर के रूप में तिलक अत्यंत लोकप्रिय थे। वे गणित के स्थायी प्रोफेसर थे और बीच बीच में संस्कृत और विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करते थे। मौलिकता और एक एक बात का ध्यान रखना उनका आदर्श वाक्य था, और वे जो भी विषय पढ़ाते थे उसमें उनके छात्रों को कभी भी शिकायत करने का अवसर नहीं मिला था।
0: अरे पाँ,
1: गणितज्ञ के रूप में उनका जवाब नहीं था, और वे अपने छात्रों को अक्सर दक्खन कॉलेज के प्रोफेसर छत्रे की याद दिलाते थे, जो तिलक के गुरु भी थे। कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद तिलक ने कानून की कक्षा ली। ये बंबई प्रेसिडेंसी में अपने ढंग का पहला शैक्षणिक संस्थान था। छात्रों को हाई कोर्ट और वकालत की परीक्षा के लिए तैयार करता था।
0: अरे वाह,
1: और उन्होंने केसरी का भार भी संभाल लिया।
0: इतने सारे काम एक साथ।
1: प्रोफेसर केलकर वर्ष के अंत तक मराठा के संपादक बने रहे, परंतु शीघ्र ही उन्हें प्रोफेसर केलकर को समाचार पत्र के साथ अपना संबंध पूरी तरह समाप्त कर देना पड़ा। अब तिलक दोनों पत्रों के संपादक बन गए।
0: अच्छा,
1: एक वर्ष

0: इन दोनों के बीच प्रेस और समाचार पत्रों का विभाजन हो गया। तिलक केसरी और मराठा समाचार पत्रों के एकमात्र मालिक और संपादक हो गए।
1: कौन?
0: प्रोफेसर केलकर और श्री गोखले आर्यभूषण प्रेस के मालिक रहे। दोनों समाचार पत्रों को अपने जन्म के बाद इस तरह अनेक उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा। तिलक द्वारा केसरी को संभालने के बाद उसकी ग्राहक संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
1: अच्छा,
0: तब उनकी ग्राहक संख्या देश के किसी भी अन्य समाचार पत्र की ग्राहक संख्या से कहीं अधिक थी।
1: अरे वाह, ये तो कमाल की बात है।
0: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के तिलक के विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधि मंडल भेजने में विश्वास रखते थे, जबकि तिलक का लक्ष्य स्वराज्य था, छोटे मोटे सुधार नहीं। और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया।
1: अच्छा।
0: इस मामले पर सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी।
1: ओह माय गॉड।
0: और मांडले बर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। मांडले जेल में तिलक ने अपनी महान कृति भगवद गीता रहस्य का लेखन शुरू किया।
1: अच्छा,
0: जो हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवत गीता के इस रूढ़िवादी सार को खारिज कर दिया कि यह पुस्तक सन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार इसमें मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है।
1: अरे वाह।
0: प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहले सन 1914 ईस्वी में रिहा होने पर वह पुनः राजनीति में कूद पड़े। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के नारे के साथ इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। सन 1916 ईस्वी में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हुए।
1: अच्छा।
0: तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनके और पाकिस्तान के भावी संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में तिलक 1918 में इंग्लैंड गए। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटेन की राजनीति में लेबर पार्टी एक उदयमान शक्ति है, इसलिए उन्होंने उसके नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध कायम किए। उनकी दूरदृष्टि सही साबित हुई। सन 1947 ईस्वी में लेबर सरकार ने ही भारत की स्वतंत्रता को मंजूरी दी।
1: अच्छा।
0: तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। इस बात से वह बराबर इनकार करते रहे कि उन्होंने हिंसा के प्रयोग को उकसाया। तिलक सन 1895 ईस्वी में शिवाजी स्मरणोत्सव आंदोलन के साथ भी जुड़ गए। उस वर्ष 23 अप्रैल के केसरी में प्रकाशित एक लेख से जनता में इतना उत्साह जागृत हुआ कि रायगढ़ में शिवाजी की समाधि के पुनर्निर्माण के लिए थोड़े ही समय में 20,000 रुपए एकत्र हो गए। इसमें से अधिकांश पैसा छोटे छोटे चंदों से हासिल हुआ था। उसी समय से शिवाजी के जन्म दिवस और राज्याभिषेक पर भी समारोह मनाए जाने लगे।
1: अच्छा।
0: जब सन 1895 ईस्वी के क्रिसमस के दौरान पूना में राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन करने का निश्चय किया गया, तो पूना की सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से तिलक को स्वागत समिति का सचिव बनाया। इस हैसियत से कांग्रेस अधिवेशन के आयोजन का सभी काम तिलक को करना पड़ा। उन्होंने सितंबर तक कार्य किया। जब इस

0: विषय पर विवाद हो गया कि क्या कांग्रेस के पंडाल में सामाजिक परिषद भी होगी, तो पार्टी में जबरदस्त झगड़ा हो गया।
1: अच्छा।
0: जिसके कारण तिलक ने स्वयं को इस काम से अलग कर लिया। फिर भी उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों में दिलचस्पी लेना बंद नहीं किया, बल्कि बाहर रहकर कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया।
1: पुराने संभ जी, ये कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि लोग सच ही कहते हैं, कुछ लोग मर कर भी अमर रहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। आखिर उनके विचार और उनका बलिदान भारत की मिट्टी में बसा है।

0: अच्छा पुराना स्तंभ जी, मुझे थोड़ा मेडिटेशन के बारे में और बताइए ना, कैसे करते हैं?
1: मनो मेडिटेशन अर्थात योग, माना जुड़ना। जैसे गणित में कहते हैं ना, दो से दो का योग चार होता है। वैसे ही आत्मा यानी रूह यानी सोल का परमात्मा को याद करना ही योग है। बस चलो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम अनुभव करती जाओ, ठीक है?
0: ओके, मैं ना सीधा होकर बैठ जाती हूँ।
1: देखो, मैंने बताया था कि आत्मा का परमात्मा को याद करना योग है, तो पहले तो हम अपने आप

0: तो आत्मा निश्चय करते हैं। विचार करो कि तुम एक आत्मा हो, इस शरीर में सर्वोच्च भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हो, और जैसे तुम आत्मा चमकता हुआ सितारा हो, वैसे ही तुम आत्मा के पिता परमात्मा वह भी चमकते हुए सितारे हैं। अब दो सितारों को मिलना है, मतलब याद करना है। तो याद के रास्ते विचारों से हम अपने पिता परमात्मा के पास जाएंगे। परमात्मा जो पांच तत्वों से पार निर्वाण धाम, शांति धाम या सातवां आसमान जिसको कहा जाता है, वहां पर है। ख्याल करो कि तुम इस शरीर से निकलकर इन चांद सितारों के पार दूर निर्वाण धाम, शांति धाम में अपने परमात्मा पिता के पास जा रहे हो। बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एक सितारा जो चमकता हुआ सितारों, चांद, तारागणों के बीच से निकलता हुआ परम धाम, शांति धाम में उस दिव्य सितारे के पास पहुंच जाता है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। अब परमात्मा को महसूस करो कि वह तुम्हारे सामने है, उसकी शक्तियां तुम में आ रही है, और ये शक्तियां लेकर तुम पुनः वापस चांद सितारों की दुनिया से गुजरते हुए इस पांच तत्वों की दुनिया में पुनः अपने शरीर में भ्रकुटी के मध्य पे आ बैठी। बार बार ये अभ्यास करने से आपको आत्मा को शक्ति महसूस होगी, और आत्मा जब सशक्त होगी तो वो जो करना चाहती है वह कर पाएगी। इसी को मेडिटेशन कहते हैं मनु।
1: वाह, मेरा मन तो एकदम जैसे शांत हो गया। ऐसी अनुभूति मैंने पहले तो कभी नहीं की।
0: है ना ये अलौकिक और बेहद सहज योग।
1: मैं पापा को आज ही बोलती हूँ कि हम सब भी मेडिटेशन सीखने जाएंगे, और मुझे लगता है इससे उनके भी बढ़ते हुए बीपी का इलाज हो जाएगा।
0: मेडिटेशन कई तरीकों से लाभदायक है।
1: इसका फायदा हम सब मिलकर उठाएंगे।
0: जरूर।
1: अच्छा, अब मैं चलती हूँ पुराना स्तंभ जी। थैंक यू, बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।
1: पुराने स्तंभ जी का बेहद धन्यवाद। चलिए अब अपने एक्सपर्ट जी से भी सुनते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के लिए कुछ अन्य विशेष बातें।
2: सुनीता अरविंद भोसले आपल्या बरोबर आहे, आणि लोकमान्य टिलक यांच्या बद्दल ते माहिती देत आहे। तर लोकमान्य टिलक आपण जेव्हा विचार करतो त्यांच्या बद्दल, इतिहास त्यांनी घडवलाय आपल्या समोर आहे, जे पण आपण वाचन करतो किंवा बघतो त्याच्या बरोबर अशा काही गोष्टी आहेत ज्या लोकांना अजून माहिती नाही लोकमान्य टिळकांबद्दल, त्या विषयाबद्दल सांगा।
3: लोकमान्य टिळकांनी फक्त पत्रकारिता किंवा समाज सुधारणेसाठी इंग्रजांबरोबर जसा लढा दिला, तसंच लोकांना संघटित करण्यासाठी त्यांनी 1893 साली सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केले, आणि 1895 सालापासून त्यांनी शिवजयंती हे उत्सव सुरू केलेले आहेत। तसंच लोकमान्य टिळकांनी शिक्षण क्षेत्रातही कार्य केलेलं आहे। ते लहानपणापासूनच तल्लख बुद्धीचे असल्यामुळे त्यांचं सगळं शिक्षण पुण्यामध्ये झालेलं आहे। पुण्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूलच्या स्थापनेच्या कार्यामध्ये ते आगरकर, चिपळूणकर यांच्याबरोबर ते कार्यरत होते। तसेच फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या स्थापनेमध्ये पण त्यांनी हातभार लावलेला आहे। तसंच मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीच्या स्थापनेतही त्यांनी हातभार लावलेला आहे। म्हणजे समाज सुधारणेच्या कार्यामध्ये आणि शिक्षणाच्या कार्यामध्येही त्यांनी मोलाचा सहभाग घेतलेला आहे।
2: इतिहास बरोबर लोकमान्य टिळकांनी जे कार्य केले किंवा त्यांचे जे वैशिष्ट्य आहे जे लोकांपर्यंत पोहोचले नाही त्याच्याबद्दल।
3: लोकमान्य टिळक हे एक सामान्यांचे नेते होते। लोकमान्य टिळकांनी होमरूल लीग

0: हम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ ताल कहाँ तम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ तेरे कर तुम ना कर तुम तेरे कर तुम ना कर तुम हम तुम लता हाथ की पाता लता हाथ पता पाता मरकत करामत
1: ताते चेता ताते चेता ताते चेता ताते चेता ताते चेता थैया थैया थै तकता दुम तकता दुम तकता न्या

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वेश्चन है वो स्टेबल रहे, ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरी किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीजों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीजें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी। वंडरफुल। अब यहां तक हम बात पहुंची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहां से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ऑब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग सारा दिन के अंदर, कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पर मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ यू नो लाइक सच नाइस।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटिफुल फ्लावर है,
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी। आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देखकर रुककर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई। उसके बाद आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर।

0: फ्रेग्रेंस कितने अच्छे है या यू नो कितना वट एवर
1: जो जो देखिए वो तो जो हम बोलते हैं हम एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं
0: राइट तो पहले थॉट क्रिएट किया
1: अच्छा
0: फिर फीलिंग
1: थॉट क्रिएट करना तो आई एक्चुअली
0: आप एक दिन उसको ऑब्जर्व कर क्या होता है प्रोसेस तो यही चल रहा है हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स राइट प्रोसेस तो वही चल रहा है अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा वही फ्लावर है वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं आप थॉट क्रिएट कर रहे हो सच फ्लावर्स यू आर फीलिंग गुड उतनी देर में आके किसी ने कुछ कह दिया
1: माई फोकस शिफ्ट
0: माई थॉट चेंजेस माई थॉट चेंजेस मुझे ऐसा क्यों बोला फीलिंग चेंज हो गई
1: हाँ इनफैक्ट उसके बाद में ध्यान ही नहीं खत्म हो गया यस
0: थॉट चेंज हो गई ना
1: ओ यस मैं फ्लावर को देखते देखते भी मुझे कुछ और याद आ जाता है तो वो फ्लावर खत्म ही हो जाता है
0: आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं आपको ये याद आ सकता है कि आपके हस्बैंड पहले व्हेन यू वर गोइंग अराउंड ही यूज्ड टू बाय सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर यू अब तो वो नहीं लेकर आते हैं व्हाटएवर तो फ्लावर तो वही है ना उस फ्लावर को ही देख देख के आप कितने अलग अलग अलग तरह के थॉट्स क्रिएट कर सकते हो और जिस क्वालिटी का थॉट क्रिएट करते जाओगे उसी तरह की फीलिंग एक्सपीरियंस होगी फीलिंग मेरा एक्सपीरियंस है लेट्स से ऐसे कानुप्रिया इज अ वंडरफुल पर्सन तो मुझे कैसा फील होगा
1: ओह वेरी गुड
0: वेरी गुड इफ आई से कानुप्रिया सच अ चीट तो कैसा फीलिंग क्रिएट होगा तो वो फीलिंग की क्वालिटी किस पर डिपेंडेंट है जो थॉट क्रिएट की आप वही है वो फूल वही है दुनिया वही है मैं उसके प्रति जो संकल्प क्रिएट करूंगी मेरी फीलिंग उस हिसाब से चेंज होती जाएगी एंड दैट्स व्हाई हम सारा दिन पूरी जीवन कैसा फील करना चाहते हैं वो किस पर डिपेंड करेगा
1: मेरे थॉट पर लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है एक्चुअली इफ यू आर सेइंग दैट क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्ट आता है और फीलिंग आ जाती है वो बीच का थॉट दिखता नहीं है मुझे जैसे गाड़ी आई तो मुझे फीलिंग आई वाओ दिस लाइक यू गेट दिस फीलिंग दिस इज माय यू नो कार ये सबसे पहले मैंने थॉट तो क्रिएट किया दिस इज माय कार
0: आई हैव अचीव्ड द कार दिस इज माय कार तो थॉट तो क्रिएट किया ने फीलिंग डिफाइंड नहीं होती है फीलिंग होती है फीलिंग वेरी गुड फीलिंग पेन थॉट बहुत स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड होती है मैंने गाड़ी खरीद ली या कुछ भी या ये गाड़ी मेरे पास नहीं है सबके पास है तो आई फील पेन या मैंने तो ये गाड़ी इतनी मुश्किल से खरीदी अब मेरी सिस्टर ने जाके मेरे से भी बड़ी गाड़ी खरीद ली
1: जेलसी
0: फीलिंग
1: वो थॉट आती है वो जेलसी ओ
0: सो फीलिंग इज जेलसी लेकिन वो क्रिएट करने के लिए थॉट कौन सी मैंने क्रिएट की अब मेरी सिस्टर ने बड़ी गाड़ी खरीद ली आई कुड ऑल्सो क्रिएट अ थॉट हाउ नाइस शी इज बॉट अ गुड कार आई विल फील गुड
1: अप्रिशिएट
0: गाड़ी वही है सिस्टर वही है मैं किस क्वालिटी के थॉट क्रिएट करती हूँ उससे मुझे एक्सपीरियंस होगी फीलिंग फीलिंग गुड और फीलिंग पेन जेलसी व्हाटएवर फिर नाउ अब जो मैं फीलिंग क्रिएट करूंगी उसके बेसिस पे फिर मैं और थॉट्स क्रिएट करती
1: जाऊँ और वो हम अवेयर हो जाते हैं
0: आप सारा दिन किस अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखते चाहिए अब जैसे सपोज हमें पहले नहीं पता था लेट्स से कि थॉट पहले आती है या फीलिंग अब सपोज हमें पता चला अब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना लेकिन सारा दिन आज जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं जैसे जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं एक एक चीज देख रहे हैं आप अगर न्यूज में देख रहे हैं कि कहीं किसी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कहीं किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में कहीं एक बहुत इलाके में अकाल पड़ गया है कहीं बात सो यू एक्सपीरियंस पेन यू नो हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन लेकिन पेन एक्सपीरियंस करने से पहले मैंने क्या किया मैंने वो इन्फॉर्मेशन ली थी और उसके बेसिस पे थॉट क्रिएट किया था कि अब इन लोगों का क्या होगा या इन लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया या इनका अब फ्यूचर क्या है वट एवर आई हैव क्रिएटेड अ थॉट एंड दैट बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इज नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग
1: बट अमेजिंग थिंग इज सिस्टर शिवानी वी डोंट इवन रिमेम्बर
0: एक बार हम अपने अंदर के प्रोसेस को समझ लेते हैं कुछ भी सारा दिन कल अगर आप अपनी रूटीन को देखें कि दिन कैसे शुरू होता है लेट से अलार्म लगाया था बजा या आपने स्नूज पर लगा दिया या जो भी उठे फर्स्ट थॉट क्रिएट होती है ओ माय गॉड इट्स लेट दिस इज वन थॉट अब इसके बाद मेरा पूरा एनर्जी लेवल एक अलग हो जाता है यू नो अब टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए या अब जल्दी जल्दी बच्चों को उठाओ या सो सारा फिर एक सीरीज ऑफ थॉट्स उसके बाद क्रिएट होती है इसलिए कहते हैं ना आज का दिन अच्छा

0: नहीं बीता, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, तो वो किसी के चेहरे देखने की बात नहीं,
1: थॉट क्रिएट किया था,
0: थॉट क्रिएट किया था।
1: ओके, अगर लेट भी हो गए तो हम क्या फोर्सफुली एक थॉट क्रिएट करें कि आज दिन अच्छा जाएगा, कोई बात नहीं, या कुछ नहीं होता?
0: क्या होता है, अगर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया
1: तो उसके बाद चेन, वो तो मैं बता रही हूँ, फीलिंग आती, जैसे मैंने फीलिंग नोट की ना, वो थॉट तो फटाफट दिख जाता है।
0: फिर उसके बाद आप सडनली फील करेंगे कि पूरे घर का एनर्जी लेवल एक केओस में जाने लगता है, फिर बच्चों को बिना बात के डांट देना, फिर बच्चों ने भी फिर ऊपर से रिएक्ट कर देना, फिर तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट होता गया जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड द डे विद अ रॉन्ग थॉट। तो इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि सुबह उठकर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट तो अपने साथ बैठे एंड स्टार्ट द डे विद वेरी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि ये दिन की फाउंडेशन है, इसके ऊपर पूरा दिन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे हम डे का टाइम टेबल बनाते हैं, उस तरह से अगर डे की शुरुआत का टाइम टेबल के थॉट्स कैसे क्रिएट करनी है, और वो करने से हमें अवेयरनेस भी आ जाती है कि आई क्रिएट माय थॉट्स,
1: वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, यस,
0: कि आई क्रिएट, आई हैव द पावर एंड आई कैन चूज
1: एंड आई कैन एक्चुअली एनी टाइम चेंज देम ऑल्सो, यू नो। बट देन अगर मैं सपोज लेट उठी हूँ तो तब भी मैं वो 5 मिनट अपने साथ जरूर दूँ?
0: एक्चुअली वो आपको हेल्प करेगा, एक्चुअली हेल्प करेगा। हम सोचते हैं कि 5 मिनट अब
1: टाइम नहीं है, हाँ।
0: फिर उससे क्या होता है, भले आप 5 मिनट नहीं निकालो लेकिन आप सारा काम तो वही करोगे, लेकिन कैसे करोगे, और ये सब प्रोसेस करते करते एक्चुअली आपको ज्यादा टाइम लग रहा है अपना काम करने में। लेकिन अगर आप 2 मिनट भी रुक जाओ, चलो आपके पास 5 मिनट नहीं है, 1 मिनट तो है, 1 मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 मिनट थॉट क्रिएट करे, ठीक है आई एम लेट बट मैं इसका इफेक्ट अब नहीं क्रिएट करने वाली हूँ, सिचुएशन इज स्टिल इन माय कंट्रोल, क्यों, क्योंकि माय स्टेट ऑफ माइंड इज इन माय कंट्रोल, मैं स्टेबल रहकर अब अपने दिन की शुरुआत करूंगी, आई ओनली हैव टू क्रिएट दिस थॉट।
1: इट्स एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट कॉन्वर्सेशन विद माय सेल्फ,
0: इट इज अ कॉन्वर्सेशन,
1: थॉट इज बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन विद
0: माय सेल्फ, थॉट इज कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ ना बार बार, मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि हाँ लेट हो गया है but it's okay,
1: and this is what I want to know, ki what is my thought, it's like it's a conversation with my own self,
0: it is, I'm creating na, to wo sara din, aap sara din bhi dekho aapke thoughts kya hain, ek inner conversation hi to chal rahi hai sara din, ye bahut bure hain, inko aisa nahi karna chahiye tha, ye bahut acche hain, inke paas jo hai main, ye kya ho raha hai andar, hum kisse baatein kar rahe hain, thoughts matlab jo hum ek inner conversation hi chal rahi hai sara din, to agar late ho bhi gaya hai wo ek loss ho gaya hai ki mera ek छोटा सा नुकसान हो गया सुबह सुबह के मैं लेट हो गई, बट लेट दैट बी द लास्ट वन फॉर द डे, इसका इफेक्ट मेरे नेक्स्ट पर ना आए, तो 1 मिनट रुक के सिर्फ कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट कर दो उस टाइम। अगर हमने थॉट क्रिएट किया लेट हो गया, अब तो सब कुछ गड़बड़
1: है, अब तो बहुत मुसीबत है,
0: इट्स माई क्रिएशन।
1: No, another thing which I really like, you know, creating thought was something, you know, like very difficult, but conversation, because हमें आदत है, see conversation क्या
0: है, ये अब सपोज आप सामने बैठे हो और मैं कहूँ लेट हो गया सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अब, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद योर विद यू, लेकिन आई एम अलोन इन द रूम एंड मैंने कहा लेट हो गया अब तो आज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, यही मैं अपने साथ अच्छी वाली कॉन्वर्सेशन भी तो कर सकती हूँ,
1: कोई बात नहीं, इट्स ओके, सी अगर मैं लेट हुई होती या आप लेट हो जाए तो आपको मैं ये बोलती ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हाँ आई कैन डू इट विद माई सेल्फ,
0: आई कैन डू इट विद माई सेल्फ,
1: नो बट विल इट इफेक्ट,
0: इट विल चेंज योर डे, आपका पूरा दिन बदलेगा, जिस जिस क्वालिटी, अगर आपने अपने आप को कह दिया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है,
1: तो गड़बड़ होता ही है, फिर
0: होता ही है, क्योंकि आप पूरा एनर्जी लेवल ही आपने कहा अब तो सब गड़बड़ होने वाला है, अब तो क्या होगा, आज बच्चे भी लेट हो जाएंगे, और थॉट्स का ये है कि एक जो क्वालिटी क्रिएट होती फिर वो सीरीज कंटिन्यू होती जाती है, एंड स्पेशली अगर नेगेटिव जो क्वालिटी क्रिएट होती है ना, हम अवेयर नहीं है, वो बहुत फास्ट चलती है, अब कुछ नहीं होगा, अब बच्चे उठेंगे कि नहीं, बस तो नहीं आ जाएगी, जल्दी करो ना,
1: वो फीलिंग ऑफ क्योस हो जाती है, अगेन आई एम सेइंग कि वो, क्योंकि वो थॉट्स इतने फास्ट हैं कि उसके बारे में, और फीलिंग जब हिट करती है तब हमें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है,
0: but by that time we have already drained ourselves of a lot of energy, and ye sirf subah late uthne ke liye nahi, aap kahin bhi try kar sakte ho ki suddenly office mein kuch upar niche ho gaya, aap dekh rahe hain ki log bahut chaos mein ja rahe hain, computer crash ho gaya, us pe kuch bahut data tha, turant just take that 1 minute and say okay this has happened but I will take charge of what I have to do now, ye nahi मतलब आप कॉन्शियस होंगे कि आप कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट कर

0: जितना हम धीरे धीरे ये करेंगे हमें अवेयरनेस आएगी, ये तो मैं क्रिएट करती हूँ. तो जो हम फर्स्ट चीज क्रिएट करते हैं अंदर वो थॉट होती है, और जो क्वालिटी की थॉट उसी क्वालिटी की फीलिंग, ये दोनों में कभी डिफरेंस नहीं आएगा. मतलब आप पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट अ पेनफुल फीलिंग, ये कभी भी नहीं होगा कि पॉजिटिव थॉट एंड पेनफुल फीलिंग, ये तो मैच ही नहीं करता बिल्कुल.
1: तो जहां पे भी हमारी कोई फीलिंग नेगेटिव हो रही है हमें ढूंढना है कि वो थॉट क्या.
0: एब्सोल्युटली, सी यू गेट द क्रक्स ऑफ इट. अब क्या होगा, बाहर परिवर्तन लाने की बजाय अगर मैं दर्द में हूँ, इवन अगर मुझे लगे कि आपने ऐसा किया इसलिए मैं दर्द में हूँ, आपने किया लेकिन मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ, तो अगर मुझे अपने दर्द से बाहर निकलना है मुझे सिर्फ धीरे से बैठकर प्यार से अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना है आपके प्रति. मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, जैसे जैसे मैं अपनी क्वालिटी को चेंज करती हूँ.
1: कोई बात नहीं, उन्होंने कह भी दिया तो कुछ नहीं होता, बिकॉज उन्होंने एक बार ऐसे भी तो कहा था, यू नो लाइक
0: सेल्फ काउंसलिंग,
1: या दिस इज अ फुल फ्लेज्ड कॉन्वर्सेशन.
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली.
1: एंड आई जस्ट हैव टू डू दैट,
0: आई जस्ट हैव टू डू दैट. जैसे ही मैंने अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना शुरू किया
1: तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा.
0: हाँ, और सारा दिन जो दर्द में जीते हैं उसका क्या हो रहा है,
1: यू नो लाइक अगेन. एंड कई बार ये भी कहते हैं कि अपने आप को धोखा नहीं दे रहे.
0: क्या धोखा तो नहीं दे रहे, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज कर रहे हैं. सामने जो व्यक्ति है वो वैसा ही है, परिस्थिति वैसी ही है, मेरा उसके प्रति क्या परसेप्शन है उस हिसाब से आई विल क्रिएट द थॉट.
1: एंड अनदर थिंग इज कि वो हर व्यक्ति में पॉजिटिविटी तो है ही.
0: वो तो
1: कोई कितना भी धोखा दे दिया हो, कितना भी किया हो, इफ आई एम एबल टू, यस.
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉट अबाउट अदर पीपल,
1: इट्स माई,
0: इट्स मोर अबाउट हाउ आई वॉन्ट टू फील. अब मैं क्या, सपोज अभी लेट्स लुक एट इट लाइक दैट, कि सपोज मेरे आसपास सारे जो लोग हैं वो गंदे हैं, खराब है, यू नो लाइक वी से कि इनके तो सारे ही खराब हैं सारे, तो उनकी वजह से मैं दर्द में रहूं क्या सारे जीवन. आई स्टिल हैव द, यू नो आई स्टिल हैव द कंट्रोल, आई कैन क्रिएट द राइट काइंड ऑफ थॉट इफ आई वॉन्ट टू फील गुड. और सारे लोग भी मेरे साथ आसपास अच्छे होंगे, लेकिन मेरी ही थिंकिंग अगर नेगेटिव है तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगने वाला. लोग वही हैं, एंड एक्चुअली तो लोग वही होते हैं जो हैं, विद ऑल देयर अप्स एंड देयर डाउन्स, देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस. लेकिन मेरा दृष्टिकोण मेरी थॉट को डिटरमिन करेगा, फिर मेरी फीलिंग उससे जेनरेट होगी, एंड जैसी जैसी मेरी फीलिंग्स जेनरेट होंगी उन लोगों के प्रति मेरा एटीट्यूड बनता जाएगा. ये तो है ही ऐसे.
1: अब वो एक पूरा पूरा का पूरा एक मैंने वो बना लिया, यू नो, एक यस आई कैन अंडरस्टैंड,
0: एक चेन बनती जाती है ना. ये है हमारा प्रोसेस, एक प्रोडक्ट का प्रोसेस जो अंदर चल रहा है सारा दिन, एंड समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि ये प्रोसेस अंदर चल रहा है, कि मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, एक संकल्प, उसके बेसिस पे फीलिंग्स मेरे अंदर जेनरेट होती है, एंड जो फीलिंग्स मैं किसी के भी प्रति या परिस्थिति के प्रति क्रिएट करते रहते हैं.
1: एटीट्यूड. किसी ने मुझे एक बार पेन दी, फिर दूसरी
0: किसी
1: बार
0: ने मुझे
1: दी.
0: एक बार पेन नहीं दी,
1: अगेन मैंने क्रिएट किया.
0: मैंने नहीं, अगेन नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में.
1: मतलब मुझे फीलिंग आई, ओके लेट्स टेक दिस,
0: यू नो दिस आर वोकैबुलरी मेक्स ऑल द डिफरेंस. नाउ यू आर सेइंग किसी ने मुझे एक बार पेन दी, दो बार दी, किसी ने नहीं दी. मैंने एक बार पेन क्रिएट की, ली भी नहीं,
1: क्रिएट की. Oh yes, it's very important how I, you know, I have to understand.
0: This is also your conversation, na? ये आपकी conversation चल रही है. अगर आप बोलोगे किसी ने मेरे को एक बार pain दी, दो बार दी, तो आप अपने आप को क्या कह रहे हो?
1: कोई और बाहर से देता है हमेशा मुझे. Yes.
0: Change your conversation. मैंने एक बार pain create की, it's okay, I'm creating. लेकिन मुझे awareness होगी. मैंने एक बार pain create की, दो बार की, तीन बार की, अब मेरा धीरे धीरे वो एटीट्यूड बन गया.
1: और उस व्यक्ति के प्रति, और वो फिर गुस्से का, हेट्रेड का, मतलब हर्ट का, जो भी चीजें हैं वो बनती है,
0: जो डिपेंडिंग ऑन मैंने उनके प्रति क्या सोच क्रिएट की, फिर मेरे अंदर जो फीलिंग जेनरेट की, फिर मैंने एटीट्यूड उनके बारे में बता दिया. वो तो जैसे हैं
1: वैसे ही हैं.
0: अब उसी इंसान को लेकर कोई और व्यक्ति बहुत अच्छी फीलिंग जेनरेट कर सकता है. वो व्यक्ति तो वही है. सपोज आप एक वही हैं, लेकिन आप ही को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग फीलिंग्स क्रिएट करते होंगे, और फिर अलग अलग लोगों का आपके प्रति अलग अलग वृत्ति या एटीट्यूड है. आप तो वही हैं, तो आप उनके अंदर घुस के नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन मैं आपके बारे में जो सोच रही हूँ, अब मेरा एटीट्यूड आपके बारे में बन गया. तो थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, और अब जैसे मेरा एटीट्यूड होगा वैसे फिर मैं आपसे बात करूंगी, वैसे मेरा व्यवहार होगा ऑटोमेटिकली. तो वो मेरा एक्शन में आया, मुझे दिखाई तब देता है जब एक्शन में आ जाता है.
1: मैं बोल लेती हूँ, यस,
0: जब मेरा एक्शन में आता है. जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं हमेशा ही उनसे अच्छी तरह से बात करती हूँ. वो आज गुस्सा भी कर रहे होंगे ना, मैं फिर भी

0: आज आपसे गुस्से से बात की, दूसरी बार गुस्से से बात की, चार बार की, अब मेरी आदत बन गई है गुस्से से बात करना।
1: आपके साथ तो करना ही, या जनरली भी बन जाएगी?
0: जनरली भी, फिर वो जब एक के साथ बनेगी, आदत बन रही है ना,
1: तो वो सिचुएशन कभी भी आई तो मुझे गुस्सा ही आएगा,
0: और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन रही है। अभी क्या हुआ, हमने ऑफिस में कहा कि गुस्से से ही काम कराना पड़ता है, एटीट्यूड है, गुस्से से ही काम होता है। तो मैंने गुस्से से बात की, गुस्से से बात की, काम होता गया। लेकिन वही आदत लेकर मैं घर जाती हूँ शाम को, तो फिर बच्चों से भी कैसे बात करूंगी?
1: गुस्से के बिना तो काम नहीं,
0: गुस्सा करूंगी ना तभी ये पढ़ेंगे, क्योंकि आदत बन गई है। तो आदत मेरे से सेपरेट होकर घर नहीं जाती है, फिर वो मेरा आदत, मेरा पैकेज है, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, मेरे साथ हर जगह जाएगी,
1: तो मैं ही खराब हो गई फिर। इन द सेंस मैंने अपने लिए गलत कर लिया, ये
0: साथ से लेते।
1: इट वॉज आदत मेरी उस पर्टिकुलर व्यक्ति या सिचुएशन के लिए नहीं रह गई, इट इज लाइक माई पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी,
0: दिस इज माई पर्सनैलिटी। अब मेरी जो सारी आदतें पुट टूगेदर इज माई पर्सनैलिटी, इट्स माई पर्सनैलिटी। तो मेरी पर्सनैलिटी कहाँ से बनी, जो मैं एक एक थॉट क्रिएट करती
1: हूँ। ओहो, तो गलती तो उनकी थी, पर्सनैलिटी मेरी खराब हुई।
0: गलती उनकी थी, लेकिन मैंने थॉट किस क्वालिटी की क्रिएट की?
1: वो मैं, ओके,
0: सी अगेन,
1: वो कुछ भी करते रहे,
0: मैं जो थॉट क्रिएट करता हूँ वो मेरी पर्सनैलिटी बनती है। जिस दिन मुझे ये रियलाइज हो गया, तो मेरा सारा अटेंशन किस पर चला जाएगा?
1: जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑफकोर्स।
0: हम कर क्या रहे हैं, दूसरे की पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करते करते
1: अपनी पर्सनालिटी खराब हो गई है, तो
0: क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होती गई ना।
1: तो वो तो मैं जो एक विक्टिम बन रहा था, तो मैं एक्चुअली विक्टिम बन गया, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी को ही खराब कर दिया।
0: इमोशनल अब्यूज ये हुआ ना सर, तो मेरी पूरी पर्सनालिटी अंदर कमजोर हो गई, कमजोरियां देखते देखते देखते देखते, औरों के ऊपर ब्लेम करते करते करते अपना पावर खत्म हो गई, ये मेरी पर्सनालिटी बन गई।
1: यस,
0: started with my thoughts
1: and which was justified, you know, my feeling at that time.
0: Now the last stage, which is even more important, ki jo aapki personality ban gayi usi tarah se to aap interact karoge logo ke sath, wohi energy to aap bahar duniya mein bhejenge aur waise hi fir outcome aapke sath hote jayenge. अगर आप सेंसिटिव पर्सनालिटी हैं, तो आपके साथ फिर जो होता जाएगा वो भी किस बेसिस पर होगा,
1: कि आप कैसे हो। हाँ,
0: तो जिसको हम कहेंगे, जो कर्म आप करेंगे उसी का रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब जो आपकी क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी है, दैट विल देन क्रिएट योर डेस्टिनी, क्योंकि जो आप फिर सेंड आउट करेंगे उसी का रिटर्न आपको मिलेगा। तो डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है कि मेरे साथ जो होता जाता है उसी को हम डेस्टिनी कहते हैं।
1: मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
0: हाँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये, मेरे भाग्य में है, तो ये मेरी डेस्टिनी है। लेकिन हम आज दिन तक एक स्लीपिंग मोड में जो चल रहे थे, कि वो कि मेरी डेस्टिनी कहीं और लिखी जा रही है, कोई और लिख रहा है, लेकिन मेरी डेस्टिनी तो हर स्टेप पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जो कर्म मैं करती उसी का फल मुझे मिलता
1: है।
0: जब फल मिलता तो हम कहते हैं ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा भाग्य है, लेकिन दैट इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ
1: माय
0: जो मैंने भेजा है बाहर।
1: सो मतलब जैसी मेरी पर्सनालिटी है वैसा ही मुझे मेरी डेस्टिनी हो जाएगी।
0: सो डेस्टिनी मेरी कहाँ से शुरू हुई सर?
1: कहीं ना कहीं पर्सनालिटी मेरी अलग थी और डेस्टिनी मेरी कुछ और होती थी एक्चुअली।
0: हाँ, जैसे कि
1: मतलब प्रोफेशनली मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। हम भाग्य की जहाँ बात करते हैं वो हम कुछ और बातें करने लग जाते हैं, लेकिन मेरी पर्सनालिटी जो है वो तो अगेन यू नो लाइक आई यूजुअली
0: यू नीड टू थिंक, वी कुड प्रॉब्ली डिस्कस ऑन दिस लॉन्गर, बट जस्ट टर्न ऑन इट। इसको आप सोचते जाओ कि जब हमने एक बार एक लॉ तो हमें समझ में आ गया कि जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। कर्म अब हमें समझ में आया हमारी सोच से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। डेस्टिनी मीन्स जो फल मिल रहा है। इट कुड बी ऑफ द कर्म जो मैंने आज किया, इट कुड बी ऑफ बहुत पहले का, लेकिन मिल वही रहा है
1: जो मैंने किया,
0: जो मैंने किया है, राइट? जब वो मिलता है तुरंत नहीं पता चलता कि ये जो मैंने अभी अभी किया था उसी का मिल रहा है, लेकिन अगर ये मुझे क्लियर है कि जो मिल रहा है इट्स ओनली अ रिजल्ट ऑफ जो मैंने बाहर भेजा था, तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी डेस्टिनी कौन क्रिएट कर रहा है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और कर्म मैं किस क्वालिटी का क्रिएट कर रहा हूँ, जिस क्वालिटी की मेरी थॉट है।
1: थॉट है, तो अगेन एक डिस्क्रिपेंसी अभी है जिसमें हम डिस्कस करना बाकी है, वो हम करेंगे कि पर्सनालिटी जो मैं हूँ, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो मेरी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करती है, इसको अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले का आई थिंक आई एम

0: ये क्लियर, आई थिंक लोग भी क्लियर हैं। तो ये कि जहां मैंने मुझे फीलिंग आई, चलिए हम अभी थॉट पे जाते भी नहीं, मुझे फीलिंग आई उससे पीछे अगर मैं जाके देखती हूँ कि वो कौन सा थॉट था जिसने मुझे वो फीलिंग क्रिएट की, तो मेरा वो थॉट मेरे सामने आ
1: जाएगा। एक चीज करेक्ट करूँ, फीलिंग आई नहीं, अभी ऐसा नहीं।
0: फीलिंग, हाँ
1: फीलिंग आई,
0: फीलिंग जो यहाँ से आई, जो फीलिंग यहाँ से आई। अच्छा, फॉरगेट अबाउट यहाँ से आई या यहाँ से आई,
1: दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट,
0: फीलिंग, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग गुड,
1: इट्स एन एक्सपीरियंस,
0: यस, यू नो। तो वो जो अनुभव है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं, हम हर्ट का, हम जेलसी का, हम हैप्पीनेस का, हम एक्साइटमेंट का, सबका अनुभव कर रहे हैं। वो अनुभव आते ही हम रुक जाएं और हम उस थॉट के पास जाएं कि किसने वो थॉट क्रिएट किया। वो थॉट मेरी फीलिंग के साथ जुड़ा और फिर वो एटीट्यूड बना, दैट वी कैन एक्चुअली सी, दिस कैन बी, दिस इज विजिबल। चाहे वो मेरे बॉस के साथ था, मेरे बच्चों के साथ था, मेरे हस्बैंड के साथ था, किसी के साथ भी था, वो एटीट्यूड मेरे साथ रहा, मेरे हर बार में, हर इंटरेक्शन में भी रहा।
1: तो एक्शन में आ गया ना,
0: हाँ
1: एक्शन में,
0: हर इंटरेक्शन में उनके साथ आते ही मेरा वो एटीट्यूड, चाहे वो गुस्से का था, प्यार का था, यू नो इमोशनल का था, हर्ट का था, जेलसी का था, वो इंटरेक्शन में आ जाएगा, दैट बिकम्स माय कर्म।
1: फिर हाँ, वो तो एक्शन में आ गया एंड वही एक्शन बार बार करने से हैबिट बन गई।
0: हाँ, और वो हैबिट सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं रह गई, वो मेरी एक्चुअली, दिस इज अमेजिंग, यू नो, कि ये मेरी पूरी सबके साथ इंटरेक्शन में ऐसा होने लग गया।
1: नेचुरल है ना, मेरी आदत बन जाएगी उस,
0: क्योंकि वो एंगर मैंने एक के साथ किया तो वो अर्थ हर बार सिचुएशन आती है, मुझे आदत यही हो गई कि इसी को सॉल्व ऐसे ही करना है, सो इट बिकम्स माई हैबिट,
1: राइट,
0: एंड देन माई हैबिट ऑफ कोर्स इज माई पर्सनैलिटी कंसोलिडेटेड, लाइक सारी जो हैबिट्स को मिला लेती हूँ, वो ये तो पता है हमें कि वो पर्सनैलिटी जो है मीन्स वट आर माई हैबिट्स, यू नो, हाउ आई हैंडल एवरी सिचुएशन इज माई पर्सनैलिटी, बट हाउ माई पर्सनैलिटी एक्चुअली बिकम्स और राइट्स माई डेस्टिनी इज वट आई नीड टू एक्सप्लोर। लेकिन उससे पहले ये जो पूरी साइकिल हमने देखी है, और थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड एंड देन हैबिट एंड देन पर्सनैलिटी, ये जो छह चीजें हमारे सामने आई, तीन अंदर तीन बाहर, यू नो, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग, यू नो, यस, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, बट देन टू रियली, यू नो, गो डीप इनटू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कहाँ कहाँ ये चीज आई। ओम शांति। कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, खुला मंच है, खुलकर बात कर सकते हैं, आप हमें फोन करिए या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@vkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हैप्पीनेस इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर मेरी हैप्पीनेस डिपेंड कर रही थी और कैसे मैं उस डिपेंडेंसी को वापस लेकर अपने हाथ में ले सकता हूँ। बहुत सी बातें अभी बाकी करनी है, मेरी पर्सनालिटी जो कई चीजों से बनी है, कई प्रोसेस से गुजरी है, वो पर्सनालिटी कैसे मेरा भाग्य लिखती है, कैसे मैं अपना भाग्य खुद लिख सकता हूँ, इस पर बातचीत करेंगे आने वाली कड़ी में। आपका साथ इंतजार करेंगे और अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein

0: 生死。阿弥，किसका प्रभाव किस पर पड़ता है? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा? This is my checking for today.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. कौन हूँ मैं, इस सफर पर हम चले हैं इस पूरी श्रृंखला में. मैं कौन हूँ ये जानने की हमने कोशिश की, सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है और कैसे किया जा सकता है ये भी जाना हमने पिछली कड़ी में. लेकिन एक और बात है जो जाननी बहुत जरूरी, वो ये कि इस पूरे सफर में, ये जो हम जर्नी कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस के प्रोसेस को रोकती हैं. और एक बात जो सामने आई थी वो थी ईगो. कई बार कहा जाता है कि ईगो अच्छी भी होती है. ईगो क्या है, क्या हम सही मायने में अपनी ईगो को जानते हैं, यही सारी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी शिवानी. आपका स्वागत. ये हम जान गए आपसे बात करके कि किस तरह से हमारा एक थॉट जिस तरह से जनरेट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारी डेस्टिनी को बदलता है. कुछ प्रोसेस हमारे अंदर होता है, कुछ बाहर चल रहा होता है. थोड़ा सा एक बार फिर हम रिपीट कर लें कि किस तरह से हमारे जो थॉट्स हैं ये पूरी जिंदगी को गवर्न करते
1: हैं. हर एक संकल्प जो सारा दिन उत्पन्न होता है तो थॉट से फीलिंग जेनरेट होती है. एंड सारी मेरी जो फीलिंग्स हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, दोज फीलिंग्स डेवलप माई एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट पर्सन. एटीट्यूड फिर मेरा एक्शन में आता है, चाहे वो वर्ड है या एक्शन है, फिजिकल एक्शन. एंड एक एक्शन बार बार रिपीट करने से वो मेरी हैबिट बन जाती है. एंड ऑल माई हैबिट्स पुट टूगेदर इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी. एंड ये पर्सनैलिटी जब हर क्षेत्र पर जाती है तो हर स्टेप पर मेरी डेस्टिनी बनती जाती है. तो थॉट्स से फीलिंग्स से एटीट्यूड एक्शन में आता है, हैबिट बन जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, डेस्टिनी बनती जाती है. तो संकल्प भावना बनाता है, भावना हमारी वृत्ति को बनाती है, वृत्ति कर्म में आती, एक कर्म बार बार करने से एक आदत बनती जाती है और हमारी सारी आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं. और यही व्यक्तित्व कदम कदम पर मेरा भाग्य बनाता जाता है.
0: बहुत सुंदर कि कहां से हमारी जो सोच, हमारा संकल्प,
1: तो संकल्प मेरा भाग्य बना रहा है. तो कहीं भी मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है, अगर वो मुझे पसंद नहीं है तो हम बाहर चेंज नहीं करेंगे कि परिस्थिति को कैसे चेंज करें, व्यक्ति को कैसे चेंज करें. हम अपनी सोच को परिवर्तन करना शुरू करते हैं, बिकॉज दैट्स द रॉ मटेरियल.
0: बिल्कुल.
1: तो वहां से स्टार्ट करें, बाय प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट.
0: भाग्य को बदल सकते हैं. yes. कि भाग्य हम बदल सकते हैं. कि हम बात हर बार करते हैं कि भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है और ये बड़ी लॉजिकल है, इसके पीछे लॉजिक समझ में आता है. कुछ पोर्शन हमारे अंदर चल रहा है, कुछ बाहर सामने आ जाता है, ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं. इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने ये भी जाना था कि पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि जो संकल्प की बात करते हैं वो सही हो, पॉजिटिव हो, उसके लिए वो भी कई चीजों पर डिपेंड कर रहा था.
1: पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पूर्व हमारे साथ कोई अनुभव हुए, इन्फॉर्मेशन.

0: चारों तरफ से हमारे अंदर ये कर्म इंद्रियों के द्वारा जो अंदर भरता है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और तीसरा हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं। तो ये तीन चीजें हमारे संकल्पों का सोर्स है। तो ये तीन चीजों की क्वालिटी को चेक करें, थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी परिवर्तन।
1: हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है हमारी ईगो,
0: राइट?
1: कहीं ना कहीं हम उसे अहम कहें, कहीं अभिमान कहें, अहंकार कहते हैं, ईगो जो बात है क्या एक्चुअली? ईगो, ईगो अच्छी भी कई लोग मानते हैं कि ईगो अच्छी होती है।
0: आपको क्या लगता है ईगो क्या है?
1: मुझे ये लगता है ईगो इस अहम है कि मैं सुप्रीम हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं जानता हूं, मुझे मेरे ख्याल से
0: इसका मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, आई एम द बेस्ट, दैट इज ईगो, राइट?
1: दैट्स व्हाट आई फील।
0: एंड व्हाट इफ अगर हम अपने आप को इन्फीरियर समझें?
1: अगेन व्हाट आई फील, मुझे लगता है कि अगर मैं इन्फीरियर फील कर रही हूं तो मैं रिएक्ट अपने आप को सुपीरियर शो करके करूंगी, एंड देन अगेन वो भी वही ईगो वाला
0: दो तरफ से रिएक्शन आ जाएगा ना। सुपीरियर वाला रिएक्शन बाहर आता है ज्यादातर, यू नो, इन द टर्म्स ऑफ अग्रेशन या यू नो लाउड एंगर, और इन्फीरियर जब हम फील कर रहे होते हैं वो रिएक्शन अंदर जाता है, यू नो, विड्रॉ, अपसेट,
1: हर्ट,
0: that is a reaction inside. Both are reactions and both are ego. दोनों केस में ईगो ही है, लेकिन किसी चीज में वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले लेती है, यू नो, और किसी में एक वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत ऊंचा हूं या मैं बहुत नीचा हूं, दोनों सच नहीं है। और ये दोनों किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं।
1: ब्यूटिफुल एक्चुअली, बिकॉज हेयर आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग। जब आपने हर्ट की बात की, इन्फीरियोरिटी की जो बात आ रही है, जो सेकंड टू इनसाइड जा रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को ये मिसकंसेप्शन, अगर हम कहें या ये हम कहते हैं, मुझे लगता है बहुत लोग हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव,
0: राइट?
1: यू नो दे ऑलवेज से आई गेट हर्ट वेरी इजीली, दे टेक इट एज अ स्ट्रेंथ, यू नो, कि मैं बहुत, मतलब मैं कितनी नाजुक हूं या मैं इतना नाजुक हूं कि मैं बहुत हर्ट हो जाता हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगेन इट्स अ पेन एक्चुअली।
0: तो ये तो खुद को सोचना पड़ेगा, अगर वो आपको पेन अच्छा लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है वो पेन अच्छा भी लगने लगता है कुछ लोगों को, बिकॉज ये सारे इमोशंस, पेन, हर्ट, ये शरीर में एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे खुशी भी एक केमिकल सिक्रीट करती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शरीर को उस केमिकल की आदत पड़ जाती है।
1: अभी हमने जो बात की थी
0: हैबिट, इट्स एन एडिक्शन, इट्स एन एडिक्शन ना, जैसे एक पर्टिकुलर ड्रग हम ले रहे हैं तो मेरे शरीर को उस ड्रग की आदत है, तो अगर वो ड्रग नहीं मिलेगा, आई एम लाइक मुझे चाहिए जल्दी, आई रियली नीड इट। इसी तरह अगर मुझे कुछ नहीं मिलता गुस्सा करने के लिए, या मुझे कुछ नहीं मिलता हर्ट होने के लिए, आई एम लुकिंग फॉर इट, कहाँ है वो जो मुझे हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नीडिंग इट नाउ। तो फिर छोटी सी छोटी बात, आई पिक इट अप, अच्छा आपने ये कह दिया, नाउ आई एम हर्ट, एंड द मिनट आई एम हर्ट एंड देन दैट पेन, एंड फिर वो केमिकल सिक्रीट हुआ, शरीर को वो चीज मिल गई,
1: डिप्रेशन में चला गया,
0: पर मुझे अच्छा लगने लगा, यू नो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हार्मफुल। मैं गलत तरह का केमिकल, गलत तरह का हार्मोन एक अपने शरीर में सिक्रीट कर रहा हूं, जैसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई है, वो एडिक्शन है, लेकिन है तो हार्मफुल ना, तो कहीं ना कहीं हमें मेहनत करके उस एडिक्शन को तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह एंगर, हर्ट, ये एडिक्शन है, यू नो, ये जो सेंसिटिव हम कहते हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ वेदर दैट्स गुड। सेंसिटिव होना ये अच्छा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उससे ओवरऑल मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया, बार बार या तो ऐसे या ऐसे, फिर बदलते हैं।
1: एक दलील ये दी जाती है कि आपको सेंसिटिव होना जरूरी है, अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप समझ रहे हैं दूसरों के दर्द को, या सेंसिटिव हैं चीजों को समझ सकते हैं, तो आप मैनकाइंड के लिए काम कर सकते हैं।
0: वो सेंसिटिव नहीं है, वो कंपैशन।
1: हाँ, ये यू नो दैट्स अगेन अ डिफरेंस, बिकॉज आई कैन फील, यू नो, बिकॉज आई फील द पेन विद इन मी, सो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पेन।
0: बट इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपकी बीमारी को ठीक होने के लिए पहले मुझे बीमार होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं बीमार हो गई तो मैं आपका इलाज शायद बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर मैं पहले अपना इलाज करना जरूरी हो जाएगा। तो इफ यू आर इन पेन, आई नीड टू बी हेल्दी,
1: यू नो,
0: आई अंडरस्टैंड योर पेन, दैट्स कंपैशन, सहानुभूति, कि हम आपके दर्द को समझ सके और फिर आपके साथ उस अनुसार व्यवहार करें, लेकिन खुद ही दर्द में चले गए तो फिर आपको

0: क्या, आपकी क्या मदद करेंगे, फिर तो मुझे मदद की जरूरत है. सो पेन एंड कंपैशन, दे टू डिफरेंट थिंग्स. तो सेंसिटिव जब हम बोल देते हैं, सेंसिटिव इज इन टू सेंस. सेंसिटिव कि आप दूसरे की चीज को समझते हो, आप अपने आप में इतना ज्यादा यू नो ऑब्सेस्ड नहीं हो कि आप दूसरों को समझ नहीं पाते हो. लेकिन सेंसिटिव जब हम ये कहते हैं कि भाई छोटी छोटी बात मुझे हर्ट कर जाती है, दैट्स नॉट वेरी गुड, बिकॉज फिर मेरी स्टेबिलिटी हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिस्थिति के साथ डिस्टर्ब होती रहेगी एंड मुझे खुद फिर संभालने की जरूरत है.
1: वंडरफुल, यू नो द वे यू एक्सप्लेन की हर्ट या सेंसिटिव होना भी एक ईगो का ही पार्ट है.
0: बिल्कुल.
1: तो दूसरी तरफ हम कहते हैं अहम, अहंकार, जो एंगर है, जो गुस्सा करना, जो लाउड होके दिखाना, और दूसरी तरफ ये हर्ट हो जाना, इंट्रोवर्ट हो जाना.
0: बिकॉज दोनों चीजें या तो इस तरफ या उस तरफ इज अबव द नॉर्मल मार्क. सी, आपका पेंडुलम का एक पोजिशन है, या तो हम इस तरफ चले जाते हैं या इस तरफ चले जाते हैं. दोनों केस में हम रियालिटी से दूर जा रहे हैं. सो इसलिए इट्स ईगो. यू नो ईगो, जैसे आपने कहा आई एम द बेस्ट, लेकिन ईगो जो हमने समझा राजयोग के द्वारा, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन के रूप में उसको लेते हैं. थोड़ा सा एकदम से सुनने में थोड़ा सा हैवी लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको लेंगे तो बहुत सिंपल है. इट इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज और अ रॉन्ग बिलीफ अबाउट माई सेल्फ. अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज और अ रॉन्ग बिलीफ अबाउट माई सेल्फ,
1: मतलब मैं खुद को जो समझता हूँ, एक गलत मैंने अपनी इमेज बनाई है उसके साथ मेरा जुड़ाव.
0: Yes. कोई एक ऐसा स्वरूप अपने बारे में जो सत्य नहीं है, लेकिन वो स्वरूप बनाकर उसके साथ लगाव हो जाना और उसको ही मैं समझकर
1: प्रोपोगेट करते जाना. एक्चुअली प्रोपोगेट भी
0: मतलब अपने पूरे जीवन उस मैं के आधार से चलना, और जो असली मैं है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है. तो इट कैन बी अटैचमेंट टू अ पर्सन, लगाव एक व्यक्ति से, एक वस्तु से, एक आइडिया से. आई कैन बी अटैच्ड टू एन आइडिया. एंड जब हम अटैच्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जब हम किसी भी चीज से अटैच्ड हो जाते हैं, इट्स लाइक दिस इज माय फोन, इफ आई गेट अटैच्ड टू दिस फोन
1: आई कांट अफोर्ड टू लूज इट. एक्चुअली
0: दैट्स सेकेंडरी, बट मेन थिंग क्या होती है, जैसे ये फोन है, दिस इज मी लेट्स से, एंड आई गेट अटैच्ड टू दिस फोन. नाउ आई एम नो लॉन्गर दिस,
1: I am
0: attached to this. तो मेरा जो अपना अस्तित्व था
1: वो मर्ज हो गया,
0: वो खत्म हो गया. I have lost. See, it was like this.
1: My identity.
0: Now it's one object. Till I was detached, I was in my own identity. मेरा अपना स्वरूप क्या है. लेकिन जैसे ही मेरा किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पोजिशन से, स्टेटस से, किसी भी चीज से लगाव हो गया, खो दिया. और अपना अस्तित्व खोने से मैंने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया. आई एम सो अटैच्ड टू दैट दैट आई लूज माई आइडेंटिटी इन दैट. और फिर जब मैं अपना अस्तित्व किसी और चीज में खो देती हूँ, तो जब उस चीज को कुछ होता है
1: तो मुझे प्रॉब्लम
0: होती है. मुझे होता है.
1: ओके.
0: इट्स लाइक
1: उस इमेज को प्रॉब्लम होती है,
0: उस इमेज को, क्योंकि मेरी अब जो इमेज है मैं कौन हूँ.
1: ओके.
0: तो वो इमेज एक बन गई. अब उस इमेज को अगर कुछ ठेस पहुंचे किसी भी तरह से, तो मुझे दर्द होगा. आई बाय अ कार, बहुत मेहनत की, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी से अटैचमेंट हो गई. जैसे लगा गाड़ी में बैठे तो ऐसे लगता है मैं ही हूं, ये गाड़ी में है. अगर किसी ने आके उस गाड़ी पे एक स्क्रैच कर दिया,
1: मुझे लगा मुझ पे कर दिया,
0: आपके फेस पे
1: आके. यू नो आई सीन पीपल डूइंग एक्चुअली.
0: व्हाट इज रोड रेज, व्हाट इज रोड रेज दैट इज हैपनिंग. मेरी गाड़ी को मतलब छोटा सा डेंट भी नहीं होता, कभी कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो गाड़ी को लगा कैसे.
1: नो पीपल एक्चुअली, हम, मैं भी कई बार शायद कहती हूँ आई एम सो अटैच्ड टू इट.
0: वी से इट एंड वी थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ. आई एम अटैच्ड टू द कार, आई एम वेरी अटैच्ड टू माई कार. इट्स लाइक सेइंग आई लव माई कार. आई लव माई कार एंड आई एम अटैच्ड टू कार, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स. फर्क कैसे पता चलेगा, अगर मेरी अटैचमेंट है उस गाड़ी से, अगर उस गाड़ी को स्क्रैच लगा, दर्द मुझे होगा. You know, somebody scratches the car and I go, तो स्क्रैच तो उसको किया था ना. ऐसे लगेगा मुझे स्क्रैच कर दिया किसी ने.
1: एक्चुअली यू फील दैट
0: पेन सो स्ट्रांगली. दैट्स बिकॉज यू आर नो लॉन्गर दिस, यू आर दिस. तो अगर इस पे स्क्रैच किया, दर्द इस पे होने
1: लगा. एंड देन विद दैट केमिकल रिएक्शन इज ऑफ कोर्स टेकिंग प्लेस, दैट फिजिकल पेन इज देयर
0: कंटिन्यूअसली. तो इसलिए इतनी सारी चीजों से हम अटैच हो जाते हैं.

0: ये तो बहुत छोटी चीज है व्यक्ति
1: कितने व्हाट आई वांटेड टू कम डाउन टू कि आई एम सो अटैच्ड टू माय फैमिली आई एम सो अटैच्ड टू
0: माय हमको लगता है ये अच्छी बात है
1: हाँ
0: वी सो अटैच्ड टू आवर फैमिली लेकिन अटैचमेंट ही फिर दर्द दे रही है क्यों दर्द दे रही है
1: क्योंकि वो वैसा रिएक्ट
0: है ना एक सारा एक प्रोसेस अंदर जो चल रहा है तो अटैचमेंट से क्या हुआ मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी मैं वो आइडिया बन गई मैं वो गाड़ी बन गई मैं वो व्यक्ति ही बन गई मेरा अपना अस्तित्व खत्म हो गया जहां अटैचमेंट होगी पकड़ लिया टाइट ये मेरा टाइट पकड़ लिया अच्छा भी लग रहा पकड़ते हुए लेकिन जितनी देर पकड़ा हुआ है क्या होगा अंदर ही अंदर
1: ये पूरा प्रोसेस
0: एक रेजिस्टेंस है कि कहीं ये मेरे से कोई इसको लेना चाहे आई विल नॉट इफ यू वॉन्ट टू कम एंड टेक इट अवे फ्रॉम मी आप लेने की कोशिश कीजिए आप जितना खींचेंगे मैं उसको और भी ज्यादा टाइट पकड़ूंगी आई विल नॉट लेट गो तो रेजिस्टेंस है पकड़ लिया टाइट ये मेरा है आप मेरे हैं आप किसी और से कैसे बात कर सकते
1: पोजेसिवनेस
0: ये मेरा आइडिया है आप अपना आइडिया कैसे दे सकते हैं माइन एवरीथिंग इज माइन इट्स अटैचमेंट तो जितना अटैचमेंट होगा रेजिस्टेंस होगा लेट गो नहीं करेंगे और जितना रेजिस्टेंस होगा अब सपोज ये हमने पकड़ा हुआ किसी ने कहा इसको पकड़ के रखना छूटना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पता है ना कि एक ना एक दिन ये
1: छूटेगा
0: सी द ट्रूथ आई नो प्रॉब्लम ये है कि सच को जानते हुए भी सच के खिलाफ चलने की कोशिश मालूम है दिस इज नॉट इटर्नल आई कैन नॉट होल्ड इट फॉर इटर्निटी
1: एक्चुअली वो डर भी लगता रहता है ना कि कोई ले लेगा
0: बस दैट्स इट फियर सी आई विल होल्ड इट टाइट मुझे पता भी है कि ये एक दिन गिरने वाला है सपोज ये 10 दिन के बाद गिरा ठीक है लेकिन मेरे 10 दिन कैसे बीते
1: डर में
0: कहीं ये गिर ना जाए 10 दिन के लिए मिला था यूज करने के लिए इंजॉय करके भी तो यूज कर सकते थे लेकिन वो 10 दिन कैसे बीत गए डर में कहीं ना गिर जाए कहीं ना गिर जाए कहीं ना गिर जाए जब गिरेगा तब दुख होगा लेकिन 10 दिन कैसे बीते भय में तो ईगो इज अटैचमेंट जहां अटैचमेंट होगी वहां एक रेजिस्टेंस होगी
1: लेट गो
0: नहीं छोड़ेंगे नहीं और जहां रेजिस्टेंस होगी किसी चीज को टाइट पकड़ के रखा है वहां एक डर अंदर ही अंदर बना ही रहेगा कहीं ये छूट न जाए There will be fear. Fear of so many things. So ego was attachment to a wrong image. उस wrong image को पकड़ लिया उसमें अपनी identity को
1: merge कर दिया
0: मैं कौन हूं खत्म I'm attached to my husband. So I'm so attached that I'm just a wife. Now I'm nobody else.
1: वो समर्पण जिसे हम कहते हैं कि मैं समर्पित हूं
0: लेकिन अपना अस्तित्व ही उसमें खत्म कर दिया अब वो इतना अस्तित्व खत्म कर दिया कि मैं वाइफ ही बनकर रह गई अब अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया सी वेयर द हर्ट कम्स व्हाई अटैचमेंट इज एक्चुअली हार्मफुल क्योंकि एक तो आई विल लिव इन द फियर कहीं इनको कुछ ना हो जाए कहीं इनको कुछ ना हो जाए कुछ नहीं होने वाला है सब ठीक चल रहा है और जिस दिन कुछ होने वाला है उस दिन भी आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बट आई स्पेंड माई एंटायर लाइफ कहीं इनको कुछ ना हो जाए कहीं इनको कुछ ना हो जाए कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए कहीं ये शरीर ना छोड़ दे फियर ऑफ डेथ सो आई लिव माई लाइफ इन द फियर ऑफ लूजिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट जिससे मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है और फिर अगर वो कुछ मुझे कह देते हैं ऊपर नीचे तब भी हर्ट बहुत जल्दी होता है ऐसा कहा मुझे कहा क्यों बिकॉज आई एम अटैच्ड अटैचमेंट नहीं हो बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा तो ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज रेजिस्टेंस फियर सो ईगो इज
1: फियर
0: कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर अंदर बैठा होता है कोई चीज खोने का और वो फिर एक विकराल रूप लेकर
1: ईगो के रूप में आता है चाहे वो बाहरी तौर से जो हमने बात की है
0: कोई भी बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू गो बैक टू सम फियर दैट इज देयर इनसाइड
1: दैट्स एक्चुअली you know a big change
0: are you following it but no, you feel yes. it makes
1: no no it is logical
0: process, right it's a process yes. this is self awareness abhi tak hame ye nahi pata tha abhi hame lag raha tha ego matlab just bahar hai ki ye mera baat karne ka
1: aham hai aur
0: ye meri position hai lekin jab hum wo bahya reeti se dikhate hain to hum koi na koi bhay ko chhupane ki koshish kar rahe hain ab us bhay

0: पहचानना पड़ेगा, क्योंकि भय हार्मफुल है. फियर विल ऑलवेज कॉज पेन. फियर कभी मुझे हैप्पीनेस नहीं दे सकता. तो अगर हम अपनी लाइफ को हैप्पी, स्मूथ, लाइट बनाना चाहते हैं, वी नीड टू लेट गो. और लेट गो करनी है ये अटैचमेंट्स, लेकिन वो कैसे करेंगे, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस.
1: ओके, लेकिन उससे पहले एक मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हमने बात ये की लेट गो की, अटैचमेंट की, तो वर्ल्डली चीजों से, कार से अटैचमेंट है या लैपटॉप से अटैचमेंट है या जैसे रिंग से अटैचमेंट है या मोबाइल से अटैचमेंट है, वो फिर भी एक हद तक हम आसानी से तो नहीं होता फिर भी, क्योंकि काफी काम करना पड़ता है उसके बाद, फिर भी हम कह सकते हैं अपने आप
0: हम छोड़ सकते हैं.
1: लेकिन जो हमारे लव्ड वंस जिन्हें हम कहते हैं, यू नो, हमारा पूरा संसार उनके ऊपर चल रहा है, या हमारा थॉट, हमारा आइडियाज, हमारी सोच, हमारा पूरा जिंदगी जीने का तरीका, हमारे आदर्श जिन्हें हम कहते हैं सो कॉल्ड, मतलब हमारे जो पूरा सिनेरियो है, उनके साथ जो अटैचमेंट है,
0: सी वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अटैचमेंट. क्या अभी तक हम अटैचमेंट को एक पॉजिटिव वर्ड की तरह गिन रहे थे? वो स्नेह है, प्यार है. ये नहीं है कि लव्ड वन से प्यार नहीं होना चाहिए. द डिफरेंस इज आई लव माई फ्रेंड, आई एम अटैच्ड टू माई फ्रेंड. दो डिफरेंट चीजें हैं. इफ आई जस्ट लव माई फ्रेंड तो आई विल एक्सेप्ट हर एज शी इज. वो जो है, जैसी है, आई लव यू. यू नो, आई जस्ट लव यू कनुप्रिया. आप जैसे हैं वैसे ही हैं. अगर आज आप मुझे कुछ ऊपर नीचे भी कह देते हैं, आई विल से फाइन, नो प्रॉब्लम, ये आपकी सोच है, बट आई नो व्हाट आई एम.
1: अगेन, अपनी इनर स्टेबिलिटी को आप चेंज नहीं होने दे रहे,
0: वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं आपके साथ अटैच्ड हूं, तो अगर आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है,
1: मेरी तो ज्यादा हो जाती है.
0: हाँ,
1: मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ.
0: आई एम अटैच्ड ना. सी, व्हेन इट इज अटैचमेंट, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा.
1: हाँ, डिपेंडेंस हो जाती है.
0: तो वो एक कहाँ तक एक अच्छी, हमारे लिए हेल्दी चीज है, वो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा. और जब हम खुद पेन में हैं, दर्द में हैं, तो हम दूसरे को प्यार कैसे देंगे? दूसरे को स्नेह नहीं दे सकते हैं. तो इसलिए डिटैचमेंट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड. लोग डिटैचमेंट समझते हैं कि डिटैच्ड मतलब फिर इनको किसी की परवाह नहीं है, ये दुनिया से दूर हो जाएंगे. दैट इज नॉट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट के दूसरे के मन की स्थिति मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी. डिटैचमेंट मतलब चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं अपने स्वरूप को नहीं भूलूं कि मैं कौन हूं. दैट इज डिटैचमेंट. आई डोंट गेट अटैच्ड टू अ पर्सन और टू एन ऑब्जेक्ट. एंड जितना डिटैच्ड होते जाएंगे, ये वास्तविकता है, दिस इज एब्सोल्यूट यूनिवर्सल ट्रूथ, जितना डिटैच्ड होते जाएंगे उतना और प्यार दे पाएंगे.
1: भर जाएंगे क्योंकि अंदर,
0: क्योंकि खुद भरते जाएंगे ना. आपका, आपको प्यार चाहिए नहीं, आप खुद भरते जाएंगे. दूसरा कुछ कह भी देगा, अभी देखो प्यार पे कमी कहाँ आती है. मैं आपसे बहुत प्यार कर रही हूँ, लेकिन अब आपने कुछ मुझसे गलत कह दिया तो मेरा मूड खराब हो गया. अब मैं आपको वही प्यार दे पाऊँ? नहीं. अब मुझे लग रहा है क्यों ऐसे बात की, ऐसा क्यों किया, अब मुझे बुरा लगने लग गया. अब जब मुझे बुरा लगने लग गया, अब मैं आपको प्यार कैसे दूँ, मेरी वो स्थिति नहीं है. डॉक्टर, ही कैन बी द बेस्ट सर्जन, वो सबको ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को नहीं.
1: बिकॉज ही अटैच्ड.
0: क्योंकि जहां अटैचमेंट आई, वहां आपका स्किल भी, आपकी एफिशिएंसी, आप बेस्ट सर्जन है ना, पूरी दुनिया आपके पास सर्जरी की आ रही है, लेकिन आप अपनी फैमिली मेंबर की सर्जरी नहीं कर सकते. कितना बड़ा लॉस है. आपको किसी और सर्जन के पास जाना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी थी वो उस अटैचमेंट के कारण हैम्पर हो रही है. आपका हाथ हिलने लगेगा. इतना स्टेबल हाथ, लेकिन उस अटैचमेंट के कारण हिलने लगेगा.
1: यहाँ सिस्टर शिवानी, इससे जुड़ा एक और जो एस्पेक्ट आता है कि इसका मतलब जो सारी इमोशंस हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं जो हमें परेशान करती हैं, जिसमें क्राइंग भी आ जाता है, यू नो, हर्ट होने की,
0: ये बिहेवियर्स है. हाँ. अभी जैसे जो प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस का, वो है इसको पहचानना सारा दिन, कहाँ अटैचमेंट है, क्या फियर है, किस चीज से अटैच्ड हूँ, लेट गो. दिस इज एन इनर प्रोसेस. लेकिन ये इनर प्रोसेस को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड. वी आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड. तो हम क्या करते हैं, हम उन बिहेवियर्स को लेते हैं. कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिससे मुझे दिखाई दे रहा है ये इनका ईगो है, यू नो, ये मेरा ईगो है. तो उस बिहेवियर को लेते हैं और उस बिहेवियर से फिर बैकवर्ड चलते हैं कि ये मेरा व्यवहार है, किस चीज के डर से मैं ऐसा कर रही हूं. और अगर

0: मेरा डर है तो किस चीज से मैं अटैच थी जिसके कारण ये व्यवहार में आया। नॉर्मल अगर हम देखें कौन से अलग अलग बिहेवियर्स हम दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि ये ईगो है, कौन से बिहेवियर होंगे सारा दिन में?
1: अगेन एंगर, अगर हम बाहरी बात करते हैं तो एंगर तो सबसे बड़ा सामने आता है, और दूसरे को नीचा दिखाने की जो एक कोशिश,
0: बॉसिंग करना, कंपीटिंग,
1: क्रिटिसाइज करना, लाइक एंड व्हाट इवन एट टाइम्स आई फील आई एम टॉकिंग टू यू, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं सॉफ्टली ही प्यार से ही लेकिन मैं क्रिटिसाइज कर देती हूँ, बिकॉज मेरे को गलतियां नजर आती हैं। अगेन आई थिंक दैट इज समवेयर
0: अनदर बात है, दैट्स एन ईगो, क्रिटिसाइजिंग, पोजेसिंग, यू नो, क्राइंग।
1: अच्छा, इट्स एन ईगो,
0: इट इज इंटरनल, इंटरनल ना, तो वो इंटरनल उस रूप में आया,
1: अटेंशन सीक कर रहे हैं,
0: जस्टिफाइंग, आर्ग्यूइंग, जिद करना, सिद्ध करने की कोशिश करना, ये सब कहीं ना कहीं ईगो के कारण है और ये बाह्य स्वरूप है।
1: सिस्टर शिवानी, ये सारे जो एस्पेक्ट्स आपने बताया कि जो हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, इन पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिन्हें हम ये मान के चलते हैं कि ये बाह्य ही है, कहीं ना कहीं अंदर इससे कोई जुड़ाव नहीं है, ये आज सामने बात आई कि इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आज जो पूरा मुद्दा था वो ये था कि जो ईगो है वो बाहर भी हो सकती है और अंदर भी, और कहीं ना कहीं हमारे डर से जुड़ी है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, इट्स एन अटैचमेंट।
0: एब्सोल्युटली।
1: चलिए, आज आपसे बातचीत की, सार्थक बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: ये सफर है, ये जर्नी है जिसमें हम तलाश रहे हैं खुद को, सेल्फ अवेयरनेस। इस सफर में हम आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। आज जो हमने बात की वो ये कि इस सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस में जो ऑब्स्टेकल, जो कठिनाई सबसे बड़ी है वो है हमारी ईगो, ईगो जो बाहर भी दिखती है अंदर भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है ईगो पैदा होती है भय से, यानी कि फियर से। आगे हम जानेंगे कि किस तरह की इमोशंस या बिहेवियर्स जो हैं वो इस ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है कि आपसे इजाजत लें। आपके पास कोई सवाल है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई समस्या है, कोई बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं, आपका स्वागत है। फोन कीजिए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
2: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर।

0: उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो, एंड असर्टिव जब हम होते हैं हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है. एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

वतन करार के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। संत कबीर दास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना गया है। कबीर निष्कपट, फक्कड़, आडंबरहीन और वीतरागी जीवन जीते थे। आपाद मस्तक प्रेम में डूबे हुए कबीर ने पंडित, शेख, अवधू और योगी सभी पर आक्रमण तो किया, मगर बिना किसी बदनीयत के। पूजा, नमाज, हज और तीर्थ से उनका कोई सरोकार नहीं था। बड़े ही सहज रूप से कबीर ने कहा था कि हम वासी उस देश के, जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। उनके लिए प्रेम परम पुरुषार्थ है।

भाषा कबीर की चेरी थी, मगर उन्होंने कभी भी शब्दों का आडंबर नहीं रचा। आचार्य द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। कबीर न तो काव्यगत रूढ़ियों के कायल थे और न ही जानकार, फिर भी यूं लगता है जैसे उनके लिखे हुए सहज दोहों में सारे जग का दर्शन समाहित हो गया हो।

कबीर ने विलक्षण अलख अगोचर अगम्य और प्रेम पारावर भगवान को राम कहकर संबोधित किया है। राम से उनका अद्भुत रिश्ता रहा। वे स्वयं को राम का कुत्ता मानते थे। वे कहते थे, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। पर राम है कहाँ? जरा कबीर से पूछिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे उमेश तरकसवार, वीनस तरकसवार, निखिल, कमलेश। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, खातों से हमें जरूर सूचित करें।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंदवाद.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: मैं फिर से कुछ पढ़ना चाहता हूँ.
2: बिल्कुल.
1: एक्सेप्टेंस पर बात हो रही है. इट सेज एक्सेप्ट देन एक्ट व्हाट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स. एक्सेप्ट इट एज इफ यू हैड chosen it. This will miraculously transform your whole life.
2: Kitni powerful statement hai. Accept and then act. Paristhiti aayegi, respond humne karna hai. Lekin respond karne se pehle paristhiti ko accept kare. Accept bhi aise kare jaise ki us paristhiti ko humne hi choose kiya tha. और अगर हम ये कर लेते हैं

0: तो ये हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करेगा।
1: क्या मीनिंग है इसका?
0: ये एक शक्ति है कि जो हुआ, जैसे हमने पहले देखा, लोगों को एक्सेप्ट करना, वो जो हैं, जैसे हैं, जैसे संस्कार हैं, जैसा व्यवहार है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं?
1: हमने ये कहा था पिछली बार, आपने मुझे ये बताया था कि ये सोचो कि दे आर डिफरेंट, वो अलग हैं, लेकिन गलत नहीं है।
0: गलत नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करने से बेनिफिट क्या हो रहा था कि हमारा माइंड
1: शांत रहा,
0: साइलेंट था। हमने ये भी देखा कि हमने इंस्ट्रक्शन भी देनी है, ये नहीं है कि हम छूट गए या किनारा कर लिया, एडवाइस भी देनी है, काम भी करवाना है, लेकिन वो सब कुछ और अच्छा हो उसके लिए पहले अपने मन को शांत करना है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, एक्सेप्ट एंड देन एक्ट, एक्सेप्ट एंड देन एक्ट।
1: जैसे अगर मुझे आपको कुछ कहना है तो पहले मैं आपको एक्सेप्ट करूँ,
0: यस,
1: आपको शांत करूँ और अपने माइंड को,
0: मेरे को शांत करूँ, नहीं,
1: जैसे मैं आपको एक्सेप्ट करूँ और मेरी तरफ से आपको कोई रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं जाए, तो हम दोनों तो शांत रहेंगे।
0: नॉट नेसेसरीली मैं शांत रहूँ,
1: मेरी तरफ से वाइब्रेशन शांत रहेंगे,
0: यस,
1: तो थोड़ी भी तो थोड़ा तो असर पड़ेगा,
0: थोड़ा तो असर पड़ेगा।
1: जब मेरी बुरे थॉट्स का आपको पड़ता है तो ये भी तो पड़ेगा,
0: ये पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप शांत होकर
1: अच्छा
0: अपने को संभालेंगे और फिर उस स्थिति में जब मुझे और परिस्थिति को संभालना शुरू करेंगे, देन द होल टास्क इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल एंड ईजी।
1: उसका दिमाग ज्यादा चलता है जो स्टेबल रहता है,
0: जो स्टेबल रहता है वो शांत रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, फोकस सोल्यूशन के ऊपर होगा, जो शांत रहेगा। एक्सेप्ट एंड देन एक्ट, ये हर टाइम चेक करें। जैसे हम क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर और ये सारी चीजें लगी होती हैं, पहले यूपीएस को ऑन करो, पहले स्टेबलाइजर को ऑन करो, फिर जाके कंप्यूटर को ऑन करना।
1: फ्लक्चुएशन आ गया
0: तो। अगर वो यूपीएस को नहीं ऑन किया या स्टेबलाइजर को नहीं ऑन किया तो फिर यहाँ मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने से हमारी एनर्जी जो फ्लो करने वाली है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी, उसमें स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि पहले फिल्टर एक्सेप्टेंस का आ गया है। इज सो इम्पोर्टेंट एक्सेप्टेंस, दैट फिल्टर विल प्ले द सेम रोल लाइक दैट यूपीएस एंड दैट स्टेबिलाइजर प्लेज इन आवर हाउस। उसके बिना अगर एनर्जी जा रही है हर अप्लायंस में, मतलब हर काम में, हर रिलेशनशिप में, तो एक जगह फ्लक्चुएशन हर एक चीज पर इफेक्ट डालने वाली है। तो एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। एक्सेप्ट करना मीन्स ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, यू नो सम पीपल फील ऐसे, कैसे एक्सेप्ट ये गलत है, फिर कैसे एक्सेप्ट वो ठीक नहीं है, कैसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना डजंट मीन कि सब कुछ ठीक है।
1: ये अंडरलाइन करूंगा मैं ये लाइन को, एक्सेप्ट करना डजंट मीन सब कुछ ठीक है, सब ठीक नहीं रहते हुए भी
0: एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स मेरे मन की स्थिति ठीक है। एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि परिस्थिति ठीक है अभी। सी
1: मैं नहीं हिला,
0: हाँ एक्सेप्टेंस। सी सम पीपल से यहाँ करप्शन है, यहाँ चीटिंग है, जैसे मेरे घर में कोई स्टाफ ही गलत कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई तो घर से चोरी कर रहा है, स्मॉलर लेवल एट अ वेरी बिगर लेवल हर चीज हो रही है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करें? यू नो व्हाट पीपल विल फील, एक्सेप्ट करें मतलब एक्सेप्ट करें सब ठीक है,
1: नहीं दे दे, क्या इनको करने दें,
0: हाँ वो तो बिल्कुल नहीं, एंड सब कुछ वो ठीक है वो भी नहीं है।
1: पुलिस को अगर ये बोलेंगे तो बोलते हम चोर को चोरी करने दे रहे
0: हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर बिकॉज लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आफ्टर वॉचिंग अवेकनिंग ऑल्सो एक्सेप्ट कर लो, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लो, उसने मुझे चीट किया एक्सेप्ट कर लो, उसने गलत किया एक्सेप्ट कर लो, किसी ने तो मेरे ऑफिस में इतने लाखों का नुकसान कर दिया एक्सेप्ट कर लो। नहीं, एक्सेप्ट कर लो डजंट मीन कि परिस्थिति ठीक है, एक्सेप्ट कर लो ऑल्सो डजंट मीन कि जो सामने वाले ने किया वो चीज ठीक है। एक्सेप्ट कर लो मीन्स वर्तमान समय उस परिस्थिति को फेस करने से पहले मेरे मन की स्थिति ठीक है, क्योंकि मन की स्थिति को ठीक करे बिना जब मैं परिस्थिति को ठीक करने जाती हूँ तो परिस्थिति का प्रभाव मन पर पड़ जाता है।

0: कई गुना बढ़ जाएगा और उस फियर की वजह से वो परिस्थिति में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी पर इफेक्ट होगा। अगर उसको सर्जरी करते समय एक अर्जेंट क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ जाए, ऐसा करना है या ऐसे करना है, अभी एक सेकंड में डिसाइड करो ये करना है या ये करना है, तो बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट एंड बिकॉज ऑफ द फियर द अबिलिटी टू टेक द डिसीजन शायद हो सकता है, शायद किसी किसी के केस में कि शायद गलत डिसीजन हो जाए। तो इसीलिए मन की स्थिति पर अटेंशन रखना कितना इम्पोर्टेंट है। ये लाइन बहुत अच्छी है, इवन अगर हम बाकी लाइन को छोड़ो, सिर्फ इतनी लाइन लो, एक्सेप्ट देन एक्ट, एक्सेप्ट देन एक्ट, नॉट एक्ट एंड देन स्लोली जाके एक्सेप्ट, यू नो व्हाट वी डू।
1: हाँ, पहले एक्ट कर लिया, हो गया गलती, हाँ, हो गई, इंसान हो,
0: अच्छा कोई बात नहीं, उसने ऐसे कर दिया था, होता ही है, नहीं दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना थोड़ी देर के बाद, अच्छा उसने कर लिया कोई बात नहीं, नावा
1: बोला, उसने भी बोला चलो बात खत्म करो, ये सब पूरी बातें।
0: तो इसमें हमने क्या किया, एक्ट नॉट इवन एक्ट, रिएक्ट, रिएक्ट एंड देन एक्सेप्ट, लेकिन वो एक्सेप्टेंस का रिजल्ट नहीं है क्योंकि उस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो गई। तो इसको स्विचेस को याद रखना है, एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। फिर सेकेंड लाइन, एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन इट, वेरी पावरफुल लाइन, एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन इट।
1: बट ये अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट से देखें तो चोजन तो इसलिए किया है क्योंकि मैंने कुछ किया होगा जिसका मुझे आज परिणाम मिला,
0: परफेक्ट,
1: जो मेरे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से,
0: परफेक्ट।
1: देखिए आपके साथ एपिसोड्स करते करते कुछ तो समझ में आया।
0: अब आप ये बताओ,
1: पहले मैं यही कह रहा था एक्सीडेंट मेरा हो जाए और मैं बोलूं कि मैंने चूज किया था और ये है ना।
0: अब लेकिन ज्ञान इसीलिए इतना पावरफुल टूल प्ले करता है ना, नॉलेज, सी व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दीस इयर्स एट द ब्रह्मा कुमारीज, ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं ना, एक्सेप्ट, फिर इमीडिएटली माइंड में ऐसे आता है, ऐसे थोड़ी होता है, एक्सीडेंट हुआ उसको हमें कैसे बोलेंगे कि वो परिस्थिति अच्छी है, सपोज मेरा हाथ पैर आज टूट जाए, मैं कैसे बोलूं कि वो परिस्थिति सही है या अच्छी है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में आती हैं जो हम पहले सोचते थे कि इस बात में भी स्टेबल रहना या इस बात के लिए भी कहना कि ये जो हुआ ये सही हुआ, ये पॉसिबल नहीं है ना। इमीडिएटली द माइंड विल से ये पॉसिबल नहीं है, हाउ कैन यू से सही हुआ जो हुआ जब बात इस तरह की है। लेकिन जो आपने अभी बताया, जो कर्म फिलोसफी का ज्ञान का टूल जब अप्लाई हो जाता है वहां पे, तो फिर जो हुआ सही हुआ ये तो समझ में आ जाता है फिर। और जो हुआ सही हुआ जब कहा, जो हुआ वो हमने ही
1: चूज
0: किया था अपने पूर्व कर्म से,
1: करेक्ट,
0: तो हमारा कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आना है। इट्स एब्सोल्युटली राइट, इट्स एब्सोल्युटली फेयर, तो हमने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उस सिचुएशन को फेस करना है, उस सिचुएशन को हैंडल भी करना है, उस सिचुएशन में जो सोल्यूशन निकल सकता है वो भी निकालना है, सब कुछ करना है, उस चैलेंज को क्रॉस भी करना है।
1: ये चोजन वाली लाइन सिस्टर, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई अगेन, कई फॉरेनर्स भी लिख देते हैं अपनी किताबों में ये चोजन को, कि यू हैव चोजन इट व्हेन यू वर इन द मदर्स वूम, कि मैं पैदा होके आई विल बी अ लेपर। अरे मैंने बोले ये कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई ऐसा चूज करते है क्या? यहाँ आके लोग ना बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर बोला नहीं, आप पैदा होने से पहले भगवान आपसे पूछता है कि आपको कौन सा वाला चाहिए, देन यू चूज योर लाइफ। अरे बाबा, आज जो क्लियर हुई है बात, चूज योर लाइफ मतलब आपके कार, आपने जो कर्म किए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आई हैड टू, जैसे आपने मेरे को लास्ट टाइम बताया था कि गेटिंग हर्ट और गेटिंग एंग्री इज योर
0: चॉइस,
1: हाँ, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है कि ना, नाउ आई आइदर चूज टू रिएक्ट, रिस्पॉन्ड
0: Remain stable. Give love.
1: Or return with love.
0: Yeah.
1: I have so many choices. But I chose to get angry or slap you or murder you or whatever. So, wo maine karmic account bana ke, I have chosen my future life.
0: Very true. Lekin kai bar jo aapne kaha wo bahut beautiful hai. And very many people get little confused us baat ko lekar. Kyunki usko

0: का क्या कहते हैं हम, जैसे आपने कहा हमने चूज किया था, हमने चूज किया कि हमारे जीवन में ये चैलेंज आएगा, कोई नहीं चूज करेगा उस तरह से। अगर हमें चॉइस मिले तो हम अपने जीवन में छोटा सा दुख भी चूज नहीं करेंगे, कौन चूज करेगा?
1: रास्ते में कांटा है तो मैं रास्ते को साइड वाले चूज करता हूँ,
0: हाँ।
1: सिर्फ कांटे से हटता हूँ
0: सर,
1: तो वो तो बहुत तो बड़ी बात है।
0: लाइक यू सेड के व्हेन द सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर, माँ के गर्भ में है और अपनी जीवन की स्क्रिप्ट चूज कर रहा है अगर, या परमात्मा से पूछ रहा है और परमात्मा से जीवन की स्क्रिप्ट चूज कर रहा है, तो हम अपने जीवन में एक भी कांटा चूज नहीं करेंगे, कैसे चूज करेंगे?
1: अभी यहाँ से वॉक करके कुर्सी तक आ रहा था तो मैंने दो देखा, एक भी कीचड़ था, सूखे में गया, सूखे के बस कांटा था, हट गया,
0: हाँ।
1: इतना हटते हटते अच्छा रास्ता चूज करके आया मैं।
0: परफेक्ट। तो ये चॉइस कहाँ करनी पड़ती है? जब हम रास्ते पर चल रहे हैं।
1: करेक्ट,
0: राइट। अगर आप वहां बैठते, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी, वहां बैठकर आप नहीं चूज कर सकते कि जब जब मैं चलूंगा और जहां जहां से मैं चलूंगा कांटे आएंगे या नहीं आएंगे, दोनों चीजें चूज नहीं कर सकते, आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप रास्ते में चलेंगे
1: वो दिखा,
0: क्योंकि रास्ते में सिर्फ आप नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग हैं। सपोज ये वाली फिलोसफी होती कि हम चूज कर सकते हैं, आप भी इस जीवन में आए, मैं भी इस जीवन में आई। सपोज आपने चूज किया कि आपकी जीवन बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत स्ट्रेट चलेगी, सब परफेक्ट चलेगा। लेकिन सपोज मैंने चूज किया, सपोज कि आके आपको तंग करना है, आपको चीट करना है, आपको धोखा देना है, बार बार देना है, जो आप करेंगे उसमें मैंने ऑब्स्टिकल बनना है। अगर मैंने चूज किया तो फिर आपकी चॉइस वर्क कैसे करेगी उसके साथ? विल नॉट हैपन। पीपल नीड टू सिट इन, यू नो वी नीड टू सिट इन चर्न। जब हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, तो उसपे बहुत मंथन करने की जरूरत है।
1: अच्छे कवर से, ग्लेज्ड कवर, ब्यूटीफुल बुक, मोस्ट सेलर, ये वो लिख के कुछ भी कोई लिख
0: नहीं,
1: देता है।
0: बुक तो सही है,
1: पीपल फॉलो,
0: तो बुक तो सही है, लेकिन बुक में जो लिखा है उसका मीनिंग समझना सही रूप से है ना।
1: एक मेरा दोस्त था, वो बोलता था कि गुरु नानक जी ने भी तो यही बोला ना, नानक दुखिया सब संसार। मैंने बोला भाई तू अगली लाइन तो पढ़े, पढ़।
0: सही बात है।
1: सो सुखिया जिसे नाम लिया था,
0: राइट,
1: वो भी नहीं, आधा आधा ज्ञान लेके।
0: ज्ञान को सीधा सीधा जब हम पढ़ते हैं उसके ऊपर मंथन नहीं करते, हर शब्द के पीछे एक मीनिंग है। टॉलरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आज तक तो एक बहुत अलग मीनिंग से चले हैं हम।
1: टॉलरेंस का मीनिंग आप समझ में आया?
0: वही तो, जब परमात्मा,
1: एक्सेप्टेंस का भी,
0: एक्सेप्टेंस का भी, लेट गो का भी, कि दर्द को लेट गो करना, व्यक्ति को नहीं लेट गो कर देना, सिचुएशन को नहीं लेट गो कर देना, अपने अंदर के पकड़े हुए दर्द को लेट गो करना है, हर बात का मीनिंग समझ में आता है। इसी तरह चूज, वी चूज एवरीथिंग दैट हैपन्स इन दिस लाइफ। ये लाइन हम लोग सब अलग अलग जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, बैठकर अगर हम थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करेंगे ना, थोड़ा सा भी, हम सीधा सीधा पढ़ते हैं ना, पढ़े उसको सीधा, फिर उसको समझे, क्या हम कभी चूज करते कि हम इस जीवन में आते और हमारा डिवोर्स होता? क्या हम कभी चूज करते कि हम आते इस लाइफ में और हमारा 20 साल का बच्चा शरीर छोड़ता, यू नो एक्सीडेंट में डेथ हो जाती? कौन चूज करके आएगा ऐसे? कौन सी आत्मा अपने लिए ऐसे
1: साल तक कोमा में रहूं, कोई चूज करके
0: चूज कर सकता है? नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हमने चूज किया मतलब हम एक ऐसा कर्म करके आए हैं कि उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उस कर्म की वजह से है।
1: एक्चुअली मैं बोलूं, इट लुक साउंड वेरी स्ट्रांग, हम जो करके आए हैं, वी हैव नो अदर चॉइस
0: ऑफ
1: चूज, तो छोड़ो, वी हैव नो अदर चॉइस बट भुगतने के
0: लिए। नो अदर चॉइस व्हाई? लेकिन चूज हमने क्यों किया? क्योंकि जब हमने कर्म किया तो उसी क्षण
1: का भुगतान है ना,
0: क्योंकि कर्म हमने चूज किया था तो कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी हमने ही चूज किया है। आज अगर हम सपोज गलत खा पी रहे हैं, इतनी छोटी सी चीज भी, और हमने कहा देखे जाएगी ना, कुछ नहीं होता है, सब लोग खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब लोग ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, उसको देखो वो ठीक है, इसको देखो वो कर ठीक है। कर्म जब हम कर रहे हैं उसी क्षण हमने कर्म के कॉन्सिक्वेंस को चूज कर लिया है। अब वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस चाहे एक घंटे बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे वो 100 साल बाद आए, उस क्षण हमने कर्म

0: आपने कॉन्सिक्वेंस को चूज किया है, कर्म को तो चूज किया ही है, कर्म के कॉन्सिक्वेंस को भी हमने उसी क्षण अपने डेस्टिनी में चूज, दोनों साथ ही चल रहे हैं ना,
1: मतलब एक कॉइन के दोनों तरफ है,
0: जैसे आपने कहा और कॉन्सिक्वेंस, जैसे आपने कहा कि बात आई गुस्सा करना है या प्यार देना है सामने वाले को, ये कर्म हम उस समय चूज करेंगे, वो हम उस क्षण चूज कर रहे हैं कि ये मुझ आत्मा ने कर्म चूज किया, लेकिन उसी क्षण मुझ आत्मा ने उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी चूज कर लिया। अगर मैंने गुस्सा करने का कर्म चूज किया तो उस क्षण मुझ आत्मा ने चूज किया कि मुझ आत्मा की शक्ति कम हो रही है, मेरी खुशी गायब हो रही है, मेरी विल पावर कम हो रही है, मेरे शरीर पर उसका असर पड़ रहा है, मैं सामने वाले आत्मा को गलत वाइब्रेशन भेज रही हूँ, वो आज नहीं तो कल उसने भी मेरे साथ गलत करना ही है, ये सारे कॉन्सिक्वेंस मैंने उस क्षण जब गुस्सा चूज किया ये सारे कॉन्सिक्वेंस चूज कर लिए। अब ये कॉन्सिक्वेंस कभी भी आएंगे, कभी भी आएंगे, आई डोंट नो व्हेन दे विल कम बैक, बट दे विल कम बैक। सम कॉन्सिक्वेंसेस कम उसी टाइम उसी समय फील हो जाता है एंड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आते हैं। यही अगर हमने उस क्षण कर्म चूज किया इट्स ओके, उनके संस्कार है, और प्यार से एक्सेप्ट किया तो हमने एक कम्प्लीटली अलग लिस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस चूज कर लिए, जिसमें हमने अपने लिए खुशी, प्यार, सेहत और एक बहुत स्ट्रांग रिश्ता, ये हमने चूज कर लिया। दिस इज वॉट दोज लाइन्स मीन, वी चूज वॉट इज हैपनिंग विद अस इन लाइफ एंड दैट कुड बी एज बिग एज एक्सीडेंट, दैट कुड बी एज बिग एज एवरीथिंग, सब कुछ जो हो रहा है वो हमने चूज किया। अगर मुझे आज आकर कोई चीट करके जाता है, आई हैव चोजन इट, वो मैंने चूज किया था, कोई आत्मा
1: अगेन विल रिपीट कि बाय आर कर्म।
0: जब मुझे ये बात कूट कूट के कूट कूट के कूट कूट के, इतना इजी नहीं होता, टाइम लगता है, बार बार बोलना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि बातें हमारे सामने कई बातें अच्छी नहीं आती, तो जब बार बार कोई बात आए और बार बार हमें ये याद रहे ये मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, चाहे वो कोई बात है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो सामने से किसी का व्यवहार है, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं आज ये भी तो मैंने चूज किया है, दिस ऑल्सो इज माई चॉइस, बिकॉज हाउ यू आर विद मी इज ओनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई प्रीवियस कर्मा।
1: एंड आज बदल भी सकते हैं,
0: आज तो बदलेंगे उसको, लेकिन वो लाइन कि कैसे एक्सेप्ट करे उस सिचुएशन को, हमने चूज किया है, हमने चूज किया है, हमने चूज किया है, ये तो बार बार करना पड़ता है। सेकेंड लाइन जो बुक्स में कहेंगे वो ये कि हमने ये क्यों चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन आता ना इतना डिफिकल्ट चीज है क्यों चूज की, तो हमने क्यों चूज किया, तो कहा हमने चूज किया टू लर्न सम लेसन ऑफ लाइफ, कि सोल जान पूछ के मुश्किल चीजें चूज करती है, क्योंकि आजकल मुश्किल चीजें आ रही है सबके सामने जीवन में, तो सामने से कोई पूछता है इतनी मुश्किल चीजें मैं क्यों चूज करूं कि मेरे साथ ऐसे गलत गलत हो, तो फिर वो समझाते हैं आपने इसलिए चूज किया टू लर्न सम लेसन दैट यू नीडेड टू लर्न, विच मीन्स कि वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस आएगा, लर्न द लेसन मीन्स जो आपने अभी कहा कि इस बार का आपका रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, अगर वो रिस्पॉन्स पहले के जैसे ही था फिर से नेगेटिव तो देन वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन इन लाइफ,
1: फिर
0: हमने कुछ नहीं सीखा।
1: आजकल स्ट्रीट्स के ऊपर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं,
0: हाँ।
1: एक तो तरीका है कि मैं सामने वाली गाड़ी को देखता हूँ एकदम वो गल जल गल बंप कर दिया तो मैंने ब्रेक कर लिया, आई हैव लर्न अ लेसन,
0: राइट।
1: दूसरा मैं खुद
0: पे जाके जर्क
1: खुद जर्क मारा और मेरी गाड़ी बंप खा गई, झटका खा गई, आई हैव लर्न द लेसन की सेकेंड टाइम आई कम हियर
0: परफेक्ट, और आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर,
1: हाँ, और जो आगे आने वाला
0: एक किलोमीटर बाद एक और होगा नेक्स्ट वाला, यस। लेकिन अगर उसी स्पीड ब्रेकर पे हर रोज जा रहे हैं, हर रोज ध्यान दिए बिना जा रहे हैं और रोज रोज झटके लग रहे हैं,
1: इट्स कमिंग अगेन टू यू बिकॉज यू नॉट लर्न द लेसन।
0: See again, this speed breaker is only so beautiful.
1: बहुत

0: ट्रिगर तो वही है.
1: हाँ,
0: आई हैव नॉट लर्न द लेसन सेकंड टाइम आई एम डूइंग इट अगेन, थर्ड टाइम आई एम डूइंग इट अगेन.
1: पहली बार भी झटका लगा,
0: दूसरी बार भी
1: झटका लगा, हर बार झटका लगेगा.
0: टिल
1: आई लर्न द लेसन, एंड जैसे ही मैंने लेसन लर्न कर लिया, इट विल बी अ स्मूथ स्लाइड. लाइफ विल बिकम वेरी स्मूथ व्हेन आई लर्न द लेसन. लेकिन अगर हर बार झटका लगा, हम वही संस्कार लेकर फिर हमने जन्म लिया, फिर हमने उसको उसी तरह से रिएक्ट किया बातों को, फिर वही संस्कार लेकर जन्म लिया, तो देन इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग जन्म जन्म जन्म हम उसी स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हैं. देन वी हैवंट चेंज्ड एनीथिंग. सो दैट इज व्हाट दैट लाइन मीन्स, जो हर जगह आजकल क्योंकि बहुत कॉमन हो गया, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, कि आत्मा अपने चॉइस से इस जीवन को लिया है और लिया है लेसन्स को लर्न करने के लिए. अगर हमें उस रूप से भी वो बात याद रहती है कि हमने ये चूज किया है जीवन, तो फिर जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो वी कैन नॉट से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इन्होंने मेरे साथ क्यों किया. आप देखो, बुक्स में भी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बुक बंद करके जब बाहर आते हैं तब डू वी एक्सेप्ट द सिचुएशन. अगर हमें वो बुक की बात भी समझ में आ गई है, वी हैव चोजन दिस लाइफ, तब ये बात करना बहुत इजी हो जाएगा कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इफ यू हैव चोजन इट.
0: मेरे घर से बट 2 मिनट्स के अवे दो स्पीड ब्रेकर है. आई डोंट चूज एट होम कि जाऊंगा मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाके झटका खाऊंगा, पूरी मेरी कमर ही लेगी, मेरा खाना जो नेक्स्ट चाय हाथ में तो वो गिरेगी, जो भी है सब. आई डोंट चूज, इट इज जस्ट दैट आई एम नॉट अवेयर. सिर्फ अवेयरनेस मेरी नहीं है, मेरा ध्यान वहां है, गोल्फ में लेट हो रहे हैं, फलाने ने सब बोला, इधर बोला, ऑल दो वेस्ट थॉट्स में हूँ मैं.
1: वेस्ट थॉट्स में है ना,
0: मैं नॉर्मल सेल्फ में हूँ तो दिखता है.
1: तो दिखता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सपोज पहली बार नहीं भी दिखा,
0: सेकेंड टाइम भी आया,
1: उसके बाद कभी झटका नहीं लगना चाहिए. जब हम एक नए रास्ते पे जाते हैं ना, तो कभी पहली बार लग सकता है झटका कि हमने नहीं देखा एकदम से, लेकिन फिर झटका लगे उसके ऊपर.
0: द सोल वॉज नॉट अवेयर.
1: बट इसी तरह एक आत्मा के साथ, एक रिश्ते में, एक सिचुएशन में, किसी बात पे पहली बार झटका लगा, इट्स ओके. लेकिन हर बार उसी बात पे झटका लगेगा, तो ये तो हमारी अवेयरनेस की कमी हो जाती है. तो आज इतना ही पक्का कर लेते हैं सिर्फ. आपकी पूरी लाइन का आधी लाइन हुई सिर्फ. एक्सेप्ट एंड एक्ट, एंड एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन द सिचुएशन. तो सिचुएशन को हमने चूज किया, उतने प्यार से एक्सेप्ट करें.
0: वो तो बोल रहे, देन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ मिरेक्युलस.
1: दैट विल बी अ मिरेक्युलस, दैट वी विल सी कि वो क्या मिरेकल क्रिएट होगा फिर उससे.
0: बिफोर वी क्लोज एक मेडिटेशन कर लें.
1: श्योर, लेट्स सिट बैक कम्फर्टेबल. देखें अपने आप को. मैं आत्मा, अनेक जन्म. विजुअलाइज करें इससे पहले एक अलग शरीर, अलग बातें, अलग रिश्ते, उससे पीछे कितनी लंबी यात्रा से हम आ रहे हैं. इस लंबी यात्रा में जो जो कर्म मैंने किए, हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस आज मेरे साथ है. आज प्रेजेंट सिचुएशन, जो रिश्ते मेरे सामने हैं, जो मेरी सेहत है, जो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, हर चीज, हर बात, हर व्यक्ति को मैं आत्मा अपने कर्मों से चूज करके आई हूं. मेरे जीवन में आने वाली हर बात को मैंने खुद चूज किया है. आज मेरे पास चॉइस है कि आज कौन सा ऐसा कर्म करना है जिससे मैं अपने आज को और आने वाले भविष्य कॉन्सिक्वेंसेस को आज चूज कर सकती हूँ.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है चार बातों को छोड़ो और चार बातों को अपनाओ। तो हमें यहाँ पे देखना है कि वो कौन सी चार बातें जिन्हें हमें छोड़नी है। पहला है अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। दूसरा है किसी के साथ गलत स्पर्धा न करें। तीसरा है किसी की भी आलोचना करने से दूर रहें। और चौथा है किसी की भी शिकायत से भी दूर रहें, उसे भी छोड़नी बहुत जरूरी है। तो अपनी तुलना हम दूसरों के साथ अगर नहीं करें तो इसमें हम देखते हैं, जब अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तब तीन प्रकार की मानसिक विकृतियां खड़ी हो जाती है। पहला है सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इंफेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और तीसरा है जेलसी यानी कि ईर्ष्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुपरलेटिव फीलिंग जो होती है वाला ये जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों से अपने को ज्यादा अच्छा मानते हैं, जिसके कारण उसमें अनेक प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं। अहंकारी व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के पैसे पीड़ित रहता है। उनमें तीन मुख्य है, वो है असफल ना हो जाए कहीं, कोई उसे अस्वीकार ना करे या उसका त्याग ना करे और कुछ भी खोना ना पड़े। एक दूसरा होता है इंफेरियॉरिटी फीलिंग। इस फीलिंग के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति खुद को दूसरों से हीन तथा कम कुशलता वाला समझता है। इस प्रकार हताशा तथा निराशा से पीड़ित रहता है, उसमें उमंग उत्साह की कमी होती है। और तीसरा है वो ईर्ष्या उत्पन्न होने वाला। उसमें ईर्ष्या जो का जो मूल कारण है भी दूसरों के साथ की गई है, अपनी तुलना ही है। दूसरों की प्राप्तियों से ईर्ष्या करने से व्यक्ति नकारात्मक तथा व्यर्थ विचारों के भंवर में फंस जाता है, या तो दूसरे को गिरा देने की अथवा किसी भी तरह से उससे आगे निकल जाने की पैतृकबाजी में उसका मन व्यस्त हो जाता है। ईर्ष्या ही जो है आग के समान है, उसमें जलने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, सदैव स्मृति में रखें कि हम सब इस विश्व नाटक में एक अद्वितीय पाठधारी कलाकार हैं। हमें जिन विविध क्षमताओं का सामंजस्य है वैसे

क्षमताओं का सामंजस्य अन्य किसी व्यक्ति में हो नहीं सकता। प्रत्येक आत्मा का बल विशिष्ट है। हम अपने पार्ट से संतुष्ट रहें। तो आपने देखा कि हम अपनी तुलना अगर दूसरों के साथ करते हैं तो हमें कितनी तरह की परेशानियां हो जो होती है उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें इन तीन बातों को छोड़ना है और किन्हीं तीन बातों को अपनाना है, और वो है सुपरेटिव फीलिंग, इंपरेटिव फीलिंग और ईर्ष्या। इससे अगर हम दूर रहें तो हमारी जिंदगी में ये तुलना वाली जो बात है इससे हम परेशान ना हो और इसे हम अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए हमारा आज का विषय है चार बातों को छोड़ो, चार बातों को अपनाओ। तो हम देखते हैं कि किसी के साथ हमें गलत स्पर्धा न करें, ऐसी भावना रखनी है। स्पर्धा स्वस्थ या खेल दीदी की भावना से हो तो कुछ लाभकारी हो सकती है, लेकिन स्पर्धा का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उससे अनेक प्रकार की नुकसान हो रही है। आज स्पर्धा का स्वरूप ज्यादातर गलाकाट स्पर्धा का दूसरों को गिरा देने का भावना, ये सब किसी भी तरह से जीतना ही है। इस विचारधारा का हो या किसी भी विचारधारा का हो, ऐसी प्रतियोगिता मानसिक रूप से बहुत नुकसान करती है। मानसिक रूप से बहुत नुकसान करती है, यह व्यक्ति को निरंतर दबाव में रखती है, डरने की भावना उत्पन्न करती है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गिरा देने या छल कपट के विचार पैदा करती है। ऐसी भावना वाली स्पर्धा में प्राप्त हुई जीत के बाद स्वमान के बदले अधिकतर मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, तनाव तथा व्यग्रता बढ़ती है, हार की परिस्थिति में निराशा तथा हताशा पैदा होती है, आत्महत्या करने तक की भी किस्से बनते हैं। इसलिए ऐसी स्पर्धा से दूर रहें। प्रत्येक मनुष्य की जो विशेषताओं को देख और

विशेषताओं के अनुसार उसको आगे करें। हो सकता है हमारा कौशल्य या अनुभव ज्यादा हो तो पीछे रहकर उसे मदद करें, लेकिन सबको पीछे रखकर किसी भी तरीके से आगे रहने को तथा हमेशा प्रसिद्ध रहने की वृत्ति को समाप्त करें। सबसे ज्यादा बात अगर आती है तो वो होती है एक अहंकार की, जिसमें स्पर्धा मुख्य है कि मनुष्य स्पर्धा के लिए कुछ भी कर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके बदले जो हमें जीत मिलती है वही है विचारधाराओं को, हमें अच्छी विचारधाराओं को अपनानी है, और ये जीत जीत नहीं बल्कि हमारी हार होती है। तो आपने देखा स्पर्धा के लिए कितनी ही गलत भावनाओं से की गई ये कार्य जो होती है, ये हमें आगे बढ़ने के बजाय हमें पीछे धकेल देती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हमारा आज का विषय है चार बातों को छोड़, चार बातों को अपनाओ। तीसरा जो हमारा विषय है वो है किसी की भी आलोचना करने से हमें दूर रहना चाहिए। एक होता है दुष्भाव, देश भाव और एक दुष्टता की जो होती है ईर्ष्या की भावना से की गई आलोचना, दूसरों को नीचे गिराने की, उनके उत्साह को खत्म करने के लिए जो भावना उत्पन्न होती है, ऐसी की गई ऐसी आलोचना नकारात्मक है। इस प्रकार की आलोचना आलोचक तथा आलोचना का पात्र बनने वाले दोनों के लिए नुकसानकारक है। निष्काम स्वार्थ तथा प्रेम भाव से की गई आलोचना तथा दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों के उमंग को बढ़ाने के लिए की गई आलोचना जो होता है वो सकारात्मक तथा रचनात्मक हो सकती है। लेकिन इस प्रकार की आलोचना करने के लिए गहरी समझ तथा अनुभव की जरूरत है। हमारी आलोचना तथा उसका उसके साथ की गई जो भी आलोचनात्मक बातें होती हैं, वो ज्यादातर स्वरूप जो होता है नकारात्मक ही होता है। इसलिए आलोचना करने से दूर रहना

उचित है। आलोचना करने की आदत के लिए अधिकतर नकारात्मक दृष्टिकोण, संस्कार, स्वभाव, आदत जो होती है वो जवाबदार है। अहंकार में भी व्यक्ति को आलोचना करना देखा जाता है, वो करते हैं और उनकी आलोचना करने के फिर उसके बाद उनकी मैं ही सच्चा हूँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आलोचना से रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती है। सबसे ज्यादा जो होती है, सबसे ज्यादा यही बातें सामने आती है कि आलोचना करना मनुष्य के लिए हानिकारक ही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज देखते हैं कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। मनुष्य मात्र को जो भूल के पात्र समझकर माफ कर दे और भूल जाए, आलोचना करने वाले शब्दों के बदले सराहना करने वाले शब्द ढूंढ निकाले और सराहना करें। सराहना करने से हमारी दिनचर्या, हमारी बुद्धि और लोगों के साथ हमारा जो संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके साथ हमारा अच्छा बिहेवियर हमें अच्छे व्यवहार कुशल बनाता है और उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि आलोचना न करने की। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर से आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है चार बातों को छोड़ो और चार बातों को अपनाओ। चौथी जो बात होती है वो होता है ज्यादातर लोग शिकायत ही करते हैं, तो हमें क्या करना है? कोई भी शिकायत हमें नहीं करनी है। वर्तमान समय प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति या किसी बात के बारे में

लेकर ही घूमता रहता है। शिकायत करना यह मानव मन की एक सामान्य आदत बन गई है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अनेक व्यर्थ संकल्पों से घिरा रहता है और उसका मन अशांत रहता है। शिकायत का भाव उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे कि व्यक्ति अथवा परिस्थिति से असंतोष, अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के लिए दूसरों को जिम्मेवार मानने की प्रति, दूसरों से की गई अपेक्षाओं का पूरा न होना, किसी व्यक्ति परिस्थिति या घटना द्वारा हुआ कोई भी नुकसान, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जैसे विकारों का प्रभाव। शिकायत लेकर घूमते व्यक्ति की भाषा भी कुछ इस प्रकार होती है, जाने दो ना, किसी को कोई सेंस ही नहीं है, जाने दो ना, वह तो है ही विचित्र, मेरी सुनता ही कौन है, उसने मुझे हैरान परेशान कर डाला, भगवान आ जाए तो भी ये सब सुधरने वाले नहीं है, इत्यादि इस तरह की भावनाएं और इस तरह की बातें अक्सर किया करते हैं। शिकायतों से दूर रहने के लिए कोई भी बातों को बहुत ज्यादा उसे टालमटोल कर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की बजाय उसे हमें छोटा कर देना चाहिए और हमारे अंदर जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण है, संतुष्टता, सहनशीलता, धैर्य, निर्भयता, सहानुभूति जैसे दिव्य गुणों की धारणा हमें करनी चाहिए। सबके प्रति हमारा जो है समभाव, बंधुत्व भाव और साक्षी भाव, कर्म के सिद्धांत की गहरी समझ होनी चाहिए। ऐसी ही जो होती है जीवन को सफल, सार्थक तथा सुखमय बनाना हो तो ऐसी भावना, ऐसी सकारात्मक भावना होने से हमारा जीवन शैली भी दिन प्रतिदिन हमें एक अच्छी दिशा दिखाती है और हम अच्छे कार्य करने शुरू कर देते हैं और हमारे अंदर एक सहयोग की भावना जागृत होती है। अपना प्रत्येक कार्य सहयोग तथा संगठन की भावना से हमें करनी चाहिए। किसी भी कार्य की या योजना को सफल बनाने के लिए सफलता मजबूत संगठन के बिना संभव नहीं है और कोई भी मजबूत संगठन बिना सहयोग की भावना के संभव नहीं है। यह सिद्धांत अपने छोटे से परिवार से लेकर बड़ी वैश्विक जो भी है परियोजनाओं तक सबको लागू करना है। सबके प्रति हमारे मन में ऐसी भावनाएं हो कि सभी अच्छे हैं, सभी के प्रति हमारे मन में मित्रता की भावना हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इसके जो भी इसकी संस्कृति के मूल में ही हमें सहयोग से सर्वोदय का भाव रहा हुआ है, अर्थात ये जो भावना है ये हमें प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक के लिए हर समय हर परिस्थिति में हमारी सहयोग की भावना बनी रहती है। हाँ, ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनना ये हमारे यहाँ पुण्य का काम माना जाता है। सहयोग की भावना के बारे में कहा जाता है कि जितनी ज्यादा हाथ उठाना उतना ज्यादा अच्छा होता है, जितनी हाथ उतनी ही ज्यादा अच्छा है, जहाँ एकता वहाँ उन्नति। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, हाँ साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए अपने मन में हमेशा सद्भावना होनी चाहिए। लोगों के प्रति हमारी सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, इससे हमारी जीवन शैली दिन प्रतिदिन अच्छी हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन चार

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सेवा, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, पंकज, वेदांत, दृष्टि, आकाश, आदित्य, उन्नति।
3: आई स्पाइस, मैंने देख लिया है तुम सब पकड़े गए हो, बाहर आ जाओ।
4: ये देख लिया उसके,
5: भागो भागो भागो।

0: जी नहीं, ये चीटिंग है, मैंने पहले ही आइसपाइस बोल दिया था।
1: जी नहीं, धप्पा लगने पर फिर से डैन देना पड़ता है।
0: मैं तो नहीं देती, जो करना है कर लो। जब मैंने देख लिया था सबको, तो फिर किस बात की डैन दूँ?
2: अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं डैन दे देता हूँ।
3: अरे आज हम सब पूरे नहीं है ना?
2: हाँ वो देखो, वो आ रहे हैं उधर से, लेट लकीर साहब।
3: कहाँ गए थे?
4: वो कुछ नहीं, मैं बस यूं ही।
5: मैं बताऊं?
4: कोई जरूरत नहीं है, चुप।
5: बताता हूँ बच्चों, ये साहब आज लड़कियों की तरह अपनी माँ का घर के काम में हाथ बटा रहे थे, मैंने खुद देखा है, जनाब बर्तन धो रहे थे।
4: वो मैं आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे थे और
5: बिल्कुल मुंडू लग रहे थे जनाब।
0: तो क्या घर में हाथ बटाना सिर्फ लड़कियों का काम है?
1: बिल्कुल नहीं, सबको मदद करनी चाहिए, लड़का हो या लड़की।
6: वाह क्या बात है, कितने सयाने हो सब। जब श्रवण कुमार की कहानी पढ़ते हो तो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और दिल करता है कि उसके जैसे ही माता पिता की सेवा करे, और जब मौका मिलता है तो।
5: पर दीदी ये घर के काम करना कोई माँ की सेवा थोड़े ही है।
4: तो और क्या है, क्या तुम श्रवण कुमार की तरह माता पिता को भूमि में बैठा कर तीर्थ पे ले जाओगे?
5: नहीं वैसे नहीं, इसकी जरूरत भी तो नहीं है आजकल।
6: मैं भी वही कह रही हूँ, ये सब पौराणिक कहानियाँ आप लोगों के लिए केवल सांकेतिक हैं। इनका अर्थ समझकर इन्हें आज के संदर्भ में लेना चाहिए।
5: पर हम ऐसा ही तो सोचते हैं अपने माता पिता के लिए।
4: मतलब
5: उनकी और सब इच्छाएं तो पूरी करने की कोशिश करेंगे ही।
6: वाह क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें बनाने में तो होशियार हो सब।
3: वो कैसे?
6: इच्छाएं पूरी करोगे, पहले शुरुआत तो करो।
2: वो कैसे दीदी, कोई साफ साफ कह दे तो अच्छा रहता है।
6: तुम्हें नहीं लगता कभी तुम्हारी माँ का भी दिल करता होगा कि कोई उसे बैठकर भोजन परोसे, या प्यार से उसका हालचाल पूछे और मदद करने के लिए पूछे, या तुम्हारे पिताजी जब थके हुए आए तो उनका बेटा या बेटी उन्हें बिना मांगे ही पानी का गिलास दें?
0: ये तो है,
1: क्यों नहीं, जरूर जाएंगे।
2: पर दीदी कभी मैं पूछूं तो भी मम्मी कहती है तुम रहने दो और काम बिगाड़ोगे,
3: या कहेंगी रहने दो काम बढ़ाओगे, या हाथ जला लोगे, या चोट लग जाएगी।
6: चलो एक काम करते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी माँ की किस किस तरह से मदद कर सकते हैं।
3: आपका मतलब है सेवा?
6: हाँ यह भी एक प्रकार की सेवा ही होगी।
4: खाने के बाद अपने बर्तन उठाकर सीख में रखना।
5: बस मैं तो साफ भी कर सकता हूँ।
0: मैं भी।
6: अच्छा अच्छा आगे भी तो बोलो, अब सबको लग रहा है मैं भी कर सकता हूँ।
3: अपने जूते सही जगह पर रखकर, अपना बस्ता सही जगह पर रखकर,
4: कमरा छोड़ते समय सब लाइट पंखे बंद करके,
5: कभी नल बेकार में खुला ना छोड़कर,
0: शावर की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाकर, इससे पानी की बचत होगी।
1: पर इससे माँ की सेवा कैसे हुई?
2: माँ की नहीं तो भारत माता की तो है।
3: भारत माता की ही क्यों, पूरी धरती माता की।
1: हाँ ये तो है, याद है वो एआर रहमान का गीत, माँ तुझे सलाम।
7: अरे वो किसे याद नहीं रहेगा।
3: हम उसे भारत माँ के सम्मान में गाते हैं, अगर पूरी पृथ्वी को ध्यान में रख के गाए तो सोचो सोचो।
4: अरे हाँ उसका मतलब तो और भी विशाल हो जाएगा।
5: हाँ जब कहते हैं ना, यहाँ वहाँ सारा जग देख लिया है, तो मतलब यहाँ वहाँ सारा ब्रह्मांड देख लिया है, इसका मतलब हो जाएगा और हमारी पृथ्वी जैसा कोई नहीं मायने निकलेगा।
0: वाह क्या कल्पना की है।
6: बातें तो बड़ी गहरी कर रहे हो, टॉपिक से हटो नहीं, काम बताओ, काम जो तुम आराम से कर सकते हो, जिससे माँ की या पिताजी की घर पर सेवा हो।
1: माँ की सेवा, पापा की सेवा। हाँ अपनी चीजों का ध्यान रखकर, किताबें पेंसिल पेन सही स्थान पर रखकर, ताकि वे गुमे ना।
6: बिल्कुल जी, घूमना है क्या, किसी भी चीज का अपने स्थान पर न होना, और क्या,
2: अपना स्कूल का काम पूरा रखकर, ताकि किसी टीचर को कोई शिकायत न हो और मम्मी या पापा तक हमारी तारीफें ही पहुँचे।
3: अभी क्या तुम्हारी शरारतों की शिकायतें पहुँचती हैं?
2: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस काम बता रहा हूँ।
8: घर में साफ सफाई रख कर, जैसे फल के छिलके इधर उधर न फेंक कर, और
4: हाँ हाँ ठीक है, टॉफी के रेफर इधर उधर न फेंक कर।
0: मैं तो डस्टिंग भी कर सकती हूँ।
5: मैं भी।
6: अरे फिर शुरू हो गए बकरी की तरह मैं करने।
0: अपना खाना पूरा खाकर वेस्ट ना करके।
1: मैं बाहर से धुले कपड़े उठाकर ला सकता हूँ उनके सूख जाने के बाद।
2: मैं तो कई छोटे छोटे कपड़े तह भी लगा सकता हूँ, बस मम्मी की साड़ी नहीं, उसे लपेटते लपेटते तो मैं गिर ही जाऊँ।
6: जरा सोचो, तुम्हारी मम्मी जब बाहर से कपड़े उठाने जाए तो क्या देखें कि किसी ने उन्हें उठाकर तह भी लगा दिया है। सोचो कैसा लगेगा उन्हें।
3: मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी।
8: मेरी भी।
4: मेरी भी।
5: मेरी भी।
6: फिर
0: दीदी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कितने ही तरीके हैं जिनसे हम अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं।
1: हम जितना अपना काम खुद करेंगे उतनी ही उनकी मदद होगी।
6: सिर्फ अपना काम ही नहीं, अपना खत्म करने के बाद घर के उन सदस्यों का भी जो या तो बहुत छोटे हैं या तो बहुत बड़े और दूसरों की मदद पर आश्रित हैं।
2: जैसे मेरा छोटा भाई, मैं उसे खाना खिला सकता हूँ, पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ।
3: पर वो तो भी बहुत छोटा है।
2: मेरा मतलब है जब वह स्कूल में आ जाए।
4: और मेरे दादा दादी, उनकी टांगे दबा सकता हूँ, उन्हें कभी चप्पल या चश्मा नहीं मिल रहा हूँ तो ढूंढ के दे सकता हूँ।
0: तो दीदी क्या सेवा यही कुछ है? ये तो बहुत सरल है।
6: सेवा के बहुत रूप हैं। शब्द बड़ा है पर यह सरल तरीकों से भी हो सकता है किसी से। जैसे कोई उदास बैठा हो तो प्यार से बोलकर उसका दिल हिला देना भी एक सेवा है।
1: ऐसे तो किसी का उत्साह बढ़ाना भी सेवा है।
6: हाँ, जिस किसी काम से किसी की मदद हो जाए या भला हो वही सेवा है।
2: कई लोगों को मैंने देखा है कि गर्मियों में जब बाहर निकलते हैं तो अपने साथ ठंडी पानी की बोतलें रख लेते हैं और रिक्शे वालों को या और सड़क पर काम करने वाले लोगों को देते हैं।
3: दीदी, उस दिन मम्मी अखबार में से पढ़कर बता रहे थे कि कुछ लोगों ने ये भी सेवा शुरू कर दी है कि अगर किसी के घर में जैसे किसी की शादी के दौरान खाना बच गया हो तो वे उसे वहाँ से लाकर गरीब लोगों तक पहुँचा देते हैं।
4: हाँ, और कुछ संस्थाएं होटलों से बचा हुआ अच्छा खाना लेकर गरीबों बांटते, वो भी ठीक है।
6: और क्या, होटलों में तो कितना ही खाना बच जाता होगा, पर ये सब तो बड़ी संस्थाओं के काम है। बात उसकी करो जो तुम अपने हाथों से कर सकते हो।
0: दीदी, हम अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों का भी तो ध्यान रख सकते हैं।
6: हाँ, अपने घर की छत पर बाजरे के दाने और पानी का तसला रख सकते हैं, या पास की गौशाला में आटा या जो भी उन्हें चाहिए दे सकते हैं। कुछ लोग तो सड़क के कुत्तों को भी पालतू बना लेते हैं और वे फिर उनके घरों की रखवाली भी करते हैं।
2: मेरी दादी कहती है, सेवा से
7: मेवा मिलता है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

है कानू पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी है सबकी जानी हाथ किसी के ना आई हाथ किसी के ना आई।

خوش ہے یوں آج مل کے ہم اور تم

रहा, पल पल हर अंग फड़कता था, होठों पर प्यास महकती थी, प्राणों में प्यार धड़कता था, तब ही

माथे पर कुमकुम छाती का गोरा मुखड़ा मुस्का दे तो पूनम का चांद लगे फीका धीरे।

जाग उठे या आंधी अंधड़ साथ लिए जैसे पहाड़ से आग उठे। हो गया खड़ा तन कर राणा हाथों में भाला उठा लिया हर हर बम बम बम महादेव हर बम बम बम महादेव कह कर गण को प्रस्थान।

झरोखे पर पागल की गई झरोखे पर कटी हंसनी सी अभी घोड़े पर चढ़ा दिखा राना जैसे कमान पर चढ़ाती।

रह गया खड़ा मूरत बन कर लोहू लोहान रानी का सिर हंसता था रखा थाली पर सरदार देख चीत्कार उनका हा रानी हा मेरी रानी अद्भुत है तेरी कुर्बानी तू सचमुच ही है शत्रानी फिर एड़ लगाई घोड़े पर कर दी बोली।

कच्चा अपना लोहा सच्चा फेर के धुंधली शाम के लोहा शाम को भी चमकाए बन के गुलगुले दल के बुलबुले चाद चुलबुले सुन रे पगले डोले तू आज अपने दिल

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब हो नहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ

0: तो पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे, काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत दो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता, जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता,
1: जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं

हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी

हुआ भी ऐसा ही। निराशा की काली बदरिया उमड़ घुमड़ कर बरसी तो, लेकिन उसी में आशा की किरण फूट पड़ी और